के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM. Always heart touching.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी पहाड़ों पर होती हुई मूसलाधार बारिश को देखा है? जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन जैसे ही बारिश थमती है और आप पहाड़ी की चोटी को देखते हैं तो वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। वह सारा का सारा पानी तेज गति से ढलान की तरफ बहता हुआ नीचे की तलहटी में घाटियों के अंधेरे में समा जाता है और पहाड़ पहले जैसा ही सूखा रह जाता है। हमारी यह जो जवानी है, हमारा यह जो सांसों की ताजगी और मन का उत्साह है, यह भी ठीक उसी पहाड़ पर बरसे पानी की तरह है। कल तक जो ताकत हमारे पास थी, आज वह ढलान पर बह चुकी है। कबीर साहब आज हमें समय के इसी तेज बहाव और जीवन के सबसे बड़े सच का आईना दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। कबीर यहूं तन कत गया जो मन होता काल्ही, कबीर यहूं तन कत गया जो मन होता काल्ही, डुंगरी बूठा मेहजू गया निबाणी चाली।

वालीम। श्रोताओं, कबीर साहब जीवन के बीत जाने पर एक गहरा और विचारणीय सवाल उठाते हुए कहते हैं, कबीर यहूं तन कत गया, हे मनुष्य तू जरा देख कि यह जो तेरा तन यानी स्वस्थ और बलशाली शरीर था यह कत गया यानी कहाँ चला गया। जो मन होता काल ही, और वह मन जो कल तक कितनी सारी योजनाओं सपनों और अहंकार से भरा हुआ था, जो कल तक खुद को अजय समझता था, आज उसकी वह ताकत और उमंग कहाँ गायब हो गई। हम तेज क्षय का कारण समझाते हुए कबीर अगली पंक्ति में एक सुंदर रूपक देते हैं, डुंगरी बूठा मैं हजू, जैसे किसी डुंगरी यानी ऊंची पहाड़ी पर मेह यानी बादलों की बारिश यानी बरसात तो बहुत जोर से हुई है, गया निबानी चाली, पर वह पानी पहाड़ पर एक पल भी नहीं ठहरता, वह तेजी से बहकर सीधे निबानी यानी नीचे की ढलान और तलहटी में चली जाती है। ठीक उसी तरह हमारा यह जीवन और हमारे शरीर की ऊर्जा भी समय की ढलान पर बहकर काल के गाल में समा जाती है। तो यह दोहा बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद और वेदांत के काल चक्र का महासूत्र है। डुंगरी प्रतीक है हमारे अहंकार और हमारे उन्नत यौवन का, जहां हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ सदा के लिए रहेगा। मेह हमारे जीवन की उन सांसों और ऊर्जा का प्रतीक है जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, और निबाणी उस काल की अंतिम गति है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। कबीर यहां समझा रहे हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो शक्ति, जो संकल्प और जो दिन आज आपके पास

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में एक नई नजर से देखने लगते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और इन दिनों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस श्रृंखला में हमें समझ में आ रहा है, नए बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उन्हें हम शामिल करते जाएं अपनी डे टू डे थिंकिंग में। और ऐसे में स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे बिलीफ सिस्टम्स थे, हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स थे जिन पर हमारा जीवन आधारित था कि स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, या स्ट्रेस जो है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या मेरे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए मुझे देना ही पड़ेगा उनको बदला, क्योंकि वो देख लिया हमने कि वो नहीं काम कर रहे थे। इनफैक्ट उसी के कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो जो ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जो डिप्लीशन हो रहा था, वो बच सकता है। आगे और जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो उन्हें हम नॉर्मल बांधकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने बातें की, स्ट्रेस की कई ऐसी सारी मिथ सामने आई हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम पर हम, मतलब उस पे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ था, और अगर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमने पिछली बार बात की थी जो शुरू में ही, कि बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी पूरी डेस्टिनी के लिए।
1: Yes.
0: मैं मतलब उसी पर काम करती जा रही होती हूँ।
1: इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। एंड रॉन्ग और राइट भी हम कहते हैं ना, कौन बताएगा रॉन्ग और राइट? एनी बिलीफ सिस्टम जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है वो मेरे लिए रॉन्ग है। वी आर नॉट गोइंग टू जनरलाइज इट एंड से कि ये सबके लिए रॉन्ग है। ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए रॉन्ग है। टेंशन नेचुरल है, ये बिलीफ पकड़ा तो टेंशन जब क्रिएट हुई अंदर उसको स्वीकार करते गए, टेंशन क्रिएट होती गई,
0: पर काम करने
1: काम नहीं किया, तो फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, फिर वो मेरे आसपास जो है बच्चे परिवार उनके भी जीवन का हिस्सा बनता गया। तो हाउ कैन आई कॉल दैट दिस इज अ गुड और दिस इज अ राइट बिलीफ सिस्टम? आई नीड टू एक्सपेरिमेंट कि टेंशन अननेचुरल है, पीस रिलैक्सेशन स्टेबिलिटी ये नेचुरल है। वैसे भी वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता, चिंता तो मुझे हमेशा अप एंड डाउन लेके जाता।
0: अच्छा, इनमें इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, क्योंकि ज्यादा होते ही वो हमारे को पता चल जाता है कि वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा वरी।
1: सी, अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, जैसे अपने शरीर को लेते तो हमने कहा हेल्थ नेचुरल है, हमने कभी आपने कहा अपने आप को कि थोड़ा बीमार होना नेचुरल है? नहीं। तो हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ नेचुरल है, ये लक्ष्य लेकर आप हम अपने शरीर का ध्यान रखते तो वो हमेशा ठीक ही रहता, कभी कभी फिर थोड़ा सा हो जाता, लेकिन जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता तो हम तुरंत अपने आप को कहते हेल्थ नेचुरल है, ये कहाँ तकलीफ हो रही है, इसका जल्दी से चेकअप कराओ और इसको ठीक करो। लेकिन अगर हम अपने उस बिलीफ को चेंज करें और कहें थोड़ा थोड़ा बीमार होना तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बीमार होना नेचुरल है।
0: लेकिन ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में हम ये कहने लग गए हैं कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम इतने टेंशन में होते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो थोड़ा सा सर में दर्द, थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा कुछ खराब होना नेचुरल, ब्लड प्रेशर भी है।
1: एंड देन व्हाट इज योर डेस्टिनी विद दैट, कि वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ही चलता है। तो जो सर दर्द नेचुरल नहीं है उसको स्वीकार कर लिया एज नेचुरल, नहीं बड़ी बड़ी चीजें तो खैर जो हो अगर हो, लेकिन सर दर्द के साथ भी क्यों जीवन में चले, बैक एक के साथ भी क्यों चले, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता नहीं था कि कैसे मेहनत करनी है, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। Now why do we say it's natural? क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता नहीं कि कैसे मेहनत करनी है। तो जैसे हमने टेंशन को स्वीकार किया तो टेंशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है हेडेक. टेंशन का बाय प्रोडक्ट है ये बैकएक, ये अल्सर्स. तो फिर क्योंकि उनका कोई यू नो फिजिकल लेवल पर इलाज नहीं था, उनका इलाज ही था कि अपने थॉट्स को चेंज करना. वो हमने कहा वो तो कैसे होंगी, क्योंकि पेनफुल थॉट्स तो नेचुरल है. तो अगर दर्द वाली थॉट्स, गुस्से वाली थॉट्स नेचुरल है, तो उनका जो आफ्टर इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो भी तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा ना मुझे. तब मैंने हेडेक को, ये बैकएक को, इनको भी नेचुरल ही ले लिया. एंड नेचुरल नेचुरल बोलते बोलते आई एम कैरिंग ऑल दिस पेन इन माई लाइफ, इमोशनल पेन ऑल्सो, फिजिकल पेन ऑल्सो. फिर ये जो पेन था ये मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देने लगा. आएगा ही, मैं फिजिकली दर्द में हूँ, इमोशनली दर्द में हूँ, व्हाट डू आई गिव इन टू माई रिलेशनशिप्स. फिर मेरे रिलेशनशिप्स में थोड़ा थोड़ा टक्कर, थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार ये होने लगा, एक दूसरे से हम थोड़ा सा खिंचे रहने लगे. फिर उसको भी हमने क्या कहना शुरू किया,
0: नेचुरल है. यस, रिश्तों में खिंचाव तो मतलब इतनी इतनी तो बात चलो ठीक है ना, इतना तो होता ही है.
1: रिश्तों में खिंचाव नेचुरल है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये सब होना, ये तो नेचुरल है. अब हमारी
0: हो जाता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो.
1: तो नेचुरल नेचुरल करते करते फिर कितनी सारी अननेचुरल चीजों को
0: हमने नेचुरल की पदवी दे दी.
1: क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चीज थी उसको ही हमने कहा ये थोड़ा थोड़ा नेचुरल है.
0: एक्चुअली हमारे पास इलाज ही नहीं थे, सच्ची, वेरी ट्रू. यू नो हमने अगर थोड़ा सा भी कोशिश भी की, हमें समझ में ही नहीं आया क्या करें, तो हम फिर आगे तो बढ़ना ही है, तो आगे बढ़ते.
1: और टेंशन थोड़ा थोड़ा नेचुरल है ये कहने पर थोड़े की डेफिनेशन या थोड़े का पैरामीटर कौन फिक्स करेगा कि थोड़ा क्या? क्योंकि हमारी टेंशन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है. आज हमने कहा सिचुएशंस स्ट्रेस क्रिएट करती, तो आज छोटी मोटी सिचुएशंस है, हमने कहा थोड़ा बहुत स्ट्रेस ये तो नेचुरल है. लेकिन क्या कल सिचुएशन मुझे बताकर आएगी? टुमारो कुड बी अ बिगर सिचुएशन. कल हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस हिट्स में, कल हो सकता मेरे घर पे कुछ हो जाए, बिजनेस अप एंड डाउन हो जाए, नेचुरल कलामिटी हिट. आई मीन इट्स अनप्रिडिक्टेबल जिन समय में हम चल रहे हैं. तब क्या करेंगे? तब क्या हम अपने टेंशन पर काम कर पाएंगे कि वो थोड़े वाले पर ही रखना है, टेंशन को बढ़ाना नहीं है? विल आई बी एबल टू, लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आज मेरा टेंशन नंबर 2 पर है, लेकिन कल परिस्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई, विल आई बी एबल टू कीप इट एट नंबर 2? इट विल इमीडिएटली गो अप. एंड तब हम कहें क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी,
0: ये तो होना ही था,
1: होना ही था.
0: अच्छा एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं, इस पर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये छोटी छोटी बातों पे तो बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो इन्हें इरिटेट करती है, लेकिन कोई बड़ी बात आ जाती है ना अगर, तब स्टेबल रहते हैं.
1: सो
0: व्हाट इज दैट पर्सनालिटी?
1: इट इज अ पर्सनालिटी जो सिचुएशंस को, जब सिचुएशन बड़ी आ जाती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लेते हैं. एक होता है छोटे छोटे लेवल्स पर इरिटेट होना, यू नो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. एक होता है बड़ी जब सिचुएशन आती है तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन है कि इस सिचुएशन को तो मैंने फेस करना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बहुत कंप्लीट है कि मुझे सिचुएशन को क्रॉस करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है.
0: अच्छा, जो बाकी छोटी छोटी चीजें जो थी उनमें नहीं थी.
1: उनमें तो वो सिचुएशन नहीं थी ना, उनमें उन्होंने इरिटेशन को अपना नेचुरल बिहेवियर कर लिया. अब बड़ा कुछ ट्रेजेडी हिट कर गई फैमिली में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, सबको इसके साथ मैंने लेकर जाना है. ऐसे समय पर वो अपनी स्ट्रेस को अपने साथ अंदर रख लेते हैं, सिचुएशन को क्रॉस करते हैं. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि विद स्टेबिलिटी. अगर वो छोटी चीज़ में स्टेबल नहीं थे तो बड़ी में स्टेबल होंगे, वो नहीं है. लेकिन सिचुएशन को क्रॉस करना है, उस समय वो उसको अंदर रख लेते हैं. नॉट यू नो, जैसे अगर घर में सारे टेंशन में हैं तो आई इमिजिएटली से एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे ये और भी टेंशन में आ जाए, तो मैं तुरंत अपना बिहेवियर, अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से करता हूँ, बट नॉट नेसेसरी थॉट्स को. वो फिर उनको खुद को ही पता है,
0: अंदर अंदर
1: वो उनको खुद पता है. और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता कि सिचुएशन को तो वो क्रॉस कर लेते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर परिवार में देर इज अ डेथ इन द फैमिली, सब लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत रो रहे हैं, तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, नहीं हमने इसको क्रॉस करना है, तो वो एकदम अपने वो दर्द को अंदर ही दबा देते हैं, पूरा वो जो है सिचुएशन उसको क्रॉस करते. लेकिन कई बार उसके बाद वो
0: ब्रेकडाउन
1: हो जाते हैं, एंड यू नो एवरीथिंग. तो इसको हम कहेंगे नॉट के स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसको अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है. तो हम जिस लेवल की बात करें कि वो अंदर क्रिएट ही ना हो, हम छोटी छोटी बातों में पहले ट्राई करें कि हमें स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, फिर बड़े वाले में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बड़े वाले को नेचुरली क्रॉस कर जाएंगे. लेकिन स्टार्ट छोटे छोटे वाले सिचुएशन से करना पड़ेगा. कई बार हम समझते कि स्ट्रेस जो है वो एक एलिमेंट, एक बीमारी की तरह है, कि क्या एक डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं,
0: हम तो हो ही नहीं पाएगा. हाँ,
1: सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस, ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है. तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ. पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ. जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता, सो वी गो एंड चेक आवर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ पैरामीटर अफेक्टेड है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस, ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है. तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ. पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ. जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता, सो वी गो एंड चेक आवर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ सिमिलरली रोज सुबह उठकर अपने थॉट्स की पल्स को चेक करो, कैसी वाली है, बीट कैसी है, नेचुरल है, ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट चल रही है. अब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हम तुरंत कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है. हम ये नहीं रियलाइज़ करते ये हार्ट बीट फास्ट हुई क्यों, इससे पहले यहाँ कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और डेफिनेटली बहुत नेगेटिव क्वालिटी का चल रहा है, जिसकी वजह से ये हार्ट बीट फास्ट हुई, ये पल्स रेट फास्ट हुई. तो जब वो स्ट्रेस हमारे फिजिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता, तब हमें लगता कि अब इसका इलाज करवाना ज़रूरी है. अगर उसको उसी लेवल पर ठीक कर दिया होता तो फिर वो फिजिकल लेवल पर आता ही नहीं. जो हमने पिछली बार बात की कि स्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता ही करता, लेकिन सबसे पहले वो मेरी कंसंट्रेशन पावर पर इफेक्ट कर जाता, मेरी मेमोरी पावर पर इफेक्ट करता, मेरी निर्णय शक्ति. कभी भी अगर आप स्ट्रेस के अंडर हैं, डोंट टेक अ डिसीजन, क्योंकि वो डिसीशन हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि तनाव के अंदर यहाँ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता और स्ट्रेस हमारी फिजिकल इस कॉस्ट्यूम पर, इस शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करता है. अगर किसी के अंदर चिंता करने की आदत है, वरी वरी वाले थॉट्स, तो फिर इनडाइजेशन, अल्सर, ये उनके लिए बहुत कॉमन होता. एंगर है तो कैंसर, यू नो रिजेंटमेंट पकड़ कर रखा है किसी के प्रति, तो वो क्रिएट हो जाता. बहुत दर्द वाले थॉट्स हैं, हार्ट पे इफेक्ट होता, ब्लॉकेज हो जाती, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज करके रखा है. सो वो हमें चेक करना है कि माइंड के लेवल पर अपने आप को, ब्लॉकेज को क्लीन करते जाएं, ताकि फिजिकल लेवल पर वो क्रिएट ही नहीं होना चाहिए.
0: दैट्स व्हाट टाइम्स वी से दैट इफ यू आर अंडर स्ट्रेस टेक अ ब्रेक, यू नो इट विल एक्चुअली टेक यू आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, और उसके बाद आपके आप फ्रेश होकर एक बार फिर से जिंदगी को, मतलब जिस भी सिचुएशन में थे वो शुरू कर सकते हैं. डज इट रियली हेल्प?
1: टेम्प्ररी यस, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे वर्क पे हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उस स्ट्रेस से गुजरे, तो आपको लगता है एग्ज़ाम के बाद लेट्स टेक अ हॉलीडे, या बहुत ज़्यादा तनाव है, चलो ऑफिस से तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर कहीं चले जाते. लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन. इट इज़ अ टेम्प्ररी, इट्स अ रिलैक्सेशन, जिसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं. वो वैसे भी अच्छा लगता है कि कुछ भी आप जो रोज़ करते आए हैं उससे आप डिफरेंट कर लेते हैं. जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने जाते तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ चली जाती. लेकिन कई बार तो लोग अपने तनाव को अपने साथ हॉलीडे पर भी कैरी कर लेते हैं. अच्छा, वो नहीं भी किया लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर भी तो वही सिचुएशन है. तो ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेस को फिनिश नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं 15 दिन के लिए कहीं और जाकर आता हूँ, मे बी आई विल गेट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. यस, तो रेस्ट हमारी बॉडी को तो रेस्ट देता, लेकिन माइंड को रेस्ट देने के लिए मुझे 15 दिन का हॉलीडे नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ सारा दिन बीच बीच में एक मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे आप काम करो फिर 15 दिन, क्योंकि 15 दिन आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, माइंड तो फिर भी काम कर रहा है। इम्पोर्टेंट ये है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट कर रहा है। हॉलीडे पे जाना या रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, दिस इज ऑल ओके, ये एंटरटेनमेंट है, दिस इज अ चेंज, बट इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेस, इट इज नॉट सोल्यूशन फॉर स्ट्रेस। सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में है। और जब आप अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉर्मल रूटीन को एंजॉय करना शुरू कर देते, तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वेंट लास्ट फॉर अ हॉलीडे, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज हॉलीडे की फीलिंग
0: बिकम्स अ हॉलीडे,
1: हॉलीडे की फीलिंग कब आती है, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक कब होगा, जब मैं यहाँ अभी आई एम नॉट यू नो हैप्पी, आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड लास्ट। क्योंकि अगर आप हर रोज को एंजॉय कर रहे हैं, हर रोज हल्के हैं, तो ब्रेक लेकर क्या करेंगे, यही सब कितना, यू नो यू एंजॉय योर वर्क, आप जो कर रहे हो उसी के अंदर अगर आप राइट थॉट से उसको कर रहे हो, यू आर एंजॉयिंग ईच डे, यू डोंट नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर दैट देन एनीथिंग।
0: वेरी ट्रू, समवेयर वही स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने सोचा कि हॉलीडे या ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक से आने के बाद भी स्ट्रेस भी वहीं रहा, वो फैक्टर्स वहीं रहे।
1: तो और स्ट्रेस को लेकर जो एक और बहुत बड़ा बिलीफ है वो है कि मेरे स्ट्रेस का कारण बाहर है, मेरे तनाव, क्यों हमने जो दूसरा बिलीफ पकड़ा कि तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, क्योंकि टेंशन के कारण बाहर थे, टेंशन के कारण थे एग्जाम्स, टेंशन का कारण है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते,
0: मदर इन लॉ, यू नो, व्हिच इज सच अ मेजर फैक्टर।
1: तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते,
0: मदर इन लॉ, यू नो, व्हिच इज सच अ मेजर फैक्टर।
1: तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला, फिर मैंने कहा मेरी टेंशन का कारण आप चेंज होते नहीं हो, तो फिर मुझे टेंशन में तो रहना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ आई एक्सेप्टेड माय टेंशन एज नेचुरल,
0: यू नो, कि सिचुएशन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, यू नो, अमेजिंग, यस, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली
1: तब हमने कहा कि तब, इसलिए अगर आप किसी से भी पूछो टेंशन होती है आपको, तो कहे समय ऐसा चल रहा है, समाज ही ऐसा है, क्यों, क्योंकि मेरी टेंशन का कारण कौन है, वो समाज, एंड समाज मींस एवरीवन अराउंड,
0: सीधा वो यही बात है जवाब कि आपको नहीं होती, कोई ऐसी चीज है, यू नो, कोई ऐसी जगह है जहाँ से टेंशन ना हो, सो मेनी टाइम्स पीपल से
1: टेंशन से भागने वाली कोई जगह है। इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ इस बीमारी से, सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन, नो वन एंड नथिंग, नो वन, एंड जब हम कहते हैं नो वन मीन्स नो वन एंड नो सिचुएशन इज द कॉज ऑफ my stress, these are situations, these are people jo bahar se aate, stress is my response to the situation, ha paristhiti challenging hai, lekin aapko nahi pata kya hua, ha paristhiti bahut challenging hai, humne kuch din pehle hi dekha death of a child in my family, ab isse zyada badi paristhiti koi nahi ho sakti shayad kisi ke liye, lekin fir bhi wo bahar hai, wo paristhiti yahan hai, us paristhiti ke response mein मुझे जो थॉट्स क्रिएट करने वो यहाँ हैं, ये मेरे हाथ में है, एक ही चीज है जो मेरे हाथ में है और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स आई क्रिएट, लेकिन उसी को मैंने सोचा कि यही मेरे हाथ में नहीं है, तो देन आई वेंट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल,
0: अमेजिंग, यस, यू नो,
1: सो द नेक्स्ट टाइम यू से मदर इन लॉ, द नेक्स्ट टाइम यू से चिल्ड्रन, एग्जाम, सिलेबस, जिससे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना, ये मेरे हाथ में है, वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेस यहाँ क्रिएट होता, यहाँ कोई घुस नहीं सकता, स्ट्रेस है मेरी फियरफुल थॉट्स, स्ट्रेस है मेरी चिंता वाली थॉट्स, परिस्थिति उसी परिस्थिति में, और इसीलिए हम देखते एक ही बॉस है लेकिन अलग अलग लोग उनके अंडर काम करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हर एक का इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो अब हमें समझ में आता कि स्ट्रेस प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट, स्ट्रेस इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है, और जो जितना अपने इनर स्ट्रेंथ अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देगा उसको स्ट्रेस नहीं होगा, और जो जितना ब्लेम करता जाएगा औरों को वो विक्टिम की तरह अपने जीवन जीता जाएगा। मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है या मेरे साथ ऐसा हो गया या उन्होंने मेरा इतना, इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे करते जाएंगे, वी क्रिएटिंग अ डेस्टिनी ऑफ टेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड देयरफॉर ऑफ पेन। सो वन बिलीफ सिस्टम शिफ्ट कि स्ट्रेस मेरी क्रिएशन है, ये किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं आती है, I create it and I can actually create it even if nothing is happening outside. सब कुछ ठीक भी होगा ना, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे सब ठीक चल रहा है बाहर, nothing is wrong, तो भी उनको टेंशन है
0: कुछ कुछ बाहर का सोच के या कुछ कुछ।
1: कई लोग कहते हैं कि इस बात की चिंता है कि कोई चिंता क्यों नहीं है आज,
0: ये क्या हो गया यार,
1: सब कुछ ठीक ठाक कैसे चल रहा है,
0: तो गड़बड़ होगा ही होगा।
1: So there you've gone and created a negative thought in response to सब कुछ ठीक है तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला इसके बाद, एंड आपने गलत क्रिएट कर दिया ऑलरेडी उसी टाइम। जैसे ही हम उंगली ऐसे करते हैं, यू नो दे आर क्रिएटिंग, नहीं वो तो ठीक है वो मुझे मालूम है, दैट्स वेरी कॉमन कि चार उंगली मेरी तरफ है, लेकिन जैसे ही हम उंगली बाहर करते माई एनर्जी फ्लोज आउट, आई डिस एम्पावर माई सेल्फ, समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, टोटली एनर्जी हैज फ्लोन आउट। जैसे ही आई डू दिस my energy ka circuit is complete, it's here, I have the power, I can do it, I will do it, that's all. Wo aise hain, wo kaise bhi hain, paristhiti itni kharab hai kaisi bhi hai, fir bhi thought kaun si create karna, ab mujhe sirf ye seekhna hai ki kin kin paristhitiyon mein mujhe kaisi wali thought create karni,
0: meri flight miss hone wali hai ya meri train chhootne wali hai.
1: Acha to aapki train chhootne wali hai, right, ab aap traffic mein atke hain, na aapki gaadi aage ja rahi na piche hil rahi, aap ghadi dekhte jayenge, क्या कर उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, ये स्ट्रेस क्रिएट करके या इस तरह से सोच के ट्रेन को रोक सकते हैं,
0: लेकिन वो कैसे मैं,
1: व्हाट कैन यू डू, यू ओनली हैव टू सिट देयर,
0: कांट डू एनीथिंग, बट देन इट्स सो नेचुरल,
1: नथिंग, यू इवन देन यू विल ओनली हैव टू टेल योरसेल्फ, होप आई रीच देयर ऑन टाइम, इफ नॉट देन आई विल हैव टू सी नाउ व्हाट नेक्स्ट एंड कीप साइलेंट, दैट्स ऑल। इसके ऊपर तो एक भी सेकेंड थॉट चलाने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितने थॉट्स आप चलाएंगे, जो आपकी गाड़ी चला रहा होगा या जो आपकी ऑटो चला रहा होगा, आप उसको कहेंगे जल्दी करो ये हो रहा है वो, आप पूरा एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट कर देंगे कि पता नहीं शायद कोई और नुकसान ना हो जाए फिर सड़क के ऊपर, यू नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से बोलने से इट्स, जिसने वो चला रहा है उसको भी पता है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, वो अपने बेस्ट चला रहा है, हमें उसको रिलैक्स्ड रहने देना है, ताकि रिलैक्स्ड होगा तो वो बेस्ट चलाएगा।
0: क्योंकि हमारा एक और बिलीफ सिस्टम है कि जब तक मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगी वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा,
1: ट्रेन छूटने वाली है शायद, थॉट क्रिएट करो ट्रेन लेट हो जाए। हैव यू एवर ट्राइड दैट? आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स, एंड डू यू नो समथिंग, इट हैपेंस, द ट्रेन गेट्स लेट, द फ्लाइट गेट्स लेट, जस्ट स्टे स्टेबल एंड से आई हैव टू रीच, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, फ्लाइट लेट हो जाएगी आज, एंड इट गेट्स लेट और द ट्रेन गेट्स लेट, सो मेनी टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड,
0: इट्स नॉट दैट आई हैव टू से प्लीज ट्रेन लेट हो जाए, आई जस्ट हैव टू से ट्रेन लेट हो जाएगी,
1: हो जाएगी, एंड हो या नहीं हो, यहाँ नहीं कुछ भी होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल,
0: एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट, अगर ट्रेन लेट होगी तब हम उसके बारे में सोचेंगे,
1: पहले से नहीं, यू नो ये भी एक, अगर नहीं पहुंचे फिर क्या नेक्स्ट,
0: क्या होगा फिर, क्या
1: That is present. That is living in the present.
0: लेकिन फिर वो planning, वो फिर हम कहते हैं कि हमें अपने आप के आगे planning तो करनी
1: है। आपकी energy इतनी waste हो जाती है उतनी देर में।
0: I suddenly realized that, you know.
1: आपकी इतनी energy drain out हो जाती है कि उस moment पे जो right decision है आप ले ही नहीं पाते। आप stable रहें, station पहुंचे। फिर अगर train चली गई है, then at the present moment, now what next?
0: Without creating
1: पहले सोच के पहले कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो being in the present means हर moment वो सोचें जो उस moment करना है, हमें लगता है पहले ही सोच के हम time बचा लेंगे और उस time जल्दी decision ले लेंगे, कई बार पहले सोचने के कारण आप कुछ और डिसीजन ले लेते हैं एंड एक्चुअली एट दैट प्रेजेंट मोमेंट समथिंग एल्स वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन.
0: दैट्स वेरी ट्रू.
1: बट यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर डिसीजन एंड यू क्रिएटेड योर डिसीजन 5 मिनट्स और 50 मिनट्स बैक. Situation has changed, time has changed. You need to take your decision now. लेकिन हम कहते हमने तो पहले ही सोच लिया था.
0: और अब वो क्योंकि वो decision लिया हुआ होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे. It's so difficult to change that decision.
1: हम सोचते नहीं. उस time हमने already decision ले लिया and we think कि हम बहुत time बचा रहे हैं. तो हम तुरंत वो जो past में decision already सोच लिया हम उसको use कर लेते हैं. Creativity means हर moment को देखते हुए. क्योंकि सिचुएशंस हर चीज मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है. मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे सोल्यूशन सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता. ओनली इफ आई क्रिएट वन थॉट कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए एक्यूरेट हो रहा है. अगर मेरी ट्रेन मिस हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें भी मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा. डजंट मीन गो लेट फ्रॉम हाउस फॉर द स्टेशन. आप अपना हर चीज एक्यूरेट
0: करो. तो करनी पड़ेगी.
1: पहले आप अपना हर चीज प्लान एक्यूरेटली करो, टाइम पर पहुंचो. लेकिन अगर वो निकल गई है नाउ व्हाट? नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम अदर ऑप्शन. एवरी मोमेंट ध्यान ये रखना. ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, ये तो ना छूट जाए ना, यही छूट जाता है, यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है.
0: तो समवेयर वो जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था वो अब समझ में आया है कि वो मेरी अपनी क्रिएशन थी. सो इधर आई क्रिएट स्ट्रेस और आई क्रिएट हैप्पीनेस. What is it you would like to create? Again, it's amazing how this journey goes, you know. You start feeling so empowered and relaxed suddenly. कि सब कुछ जो हो रहा है उसके होते हुए भी मैं जो हूँ वो नॉर्मल हूँ. थैंक यू सो मच. शांति. आपके पास कोई सवाल है? हो सकता है कि कई बार क्योंकि डिस्कशन हो रहा होता है कुछ सिचुएशंस हम ना ले पा रहे हों. आप सामने रखिए ऐसी सिचुएशंस जहाँ आपको लगता है कि आपका चेंज बिलीफ सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर पाता, मतलब वही बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है और आप नहीं चेंज कर पा रहे, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें या तो फोन पर या फिर ईमेल पर. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आज इतना ही. आगे भी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: श्रोताओं नमस्ते। आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे गौतम भाई बजाज, इनके साक्षात्कार की कड़ी।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
0: गौतम भाई, प्रोग्राम में आपका स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: जैसे कि सर, यह भूमि पुण्य पावन भूमि पवनार, और यहाँ पे विनोबा जी ने अपना पूरा जीवन बिताया। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो जीवन है उसके बारे में भी हम जानने के लिए उत्सुक है।
2: ऐसा है कि मेरे बारे में कोई विशेष नहीं है, हमारे पिताजी माताजी यही, और हमारे उसकी पहली की पीढ़ी दादाजी वगैरह नाना जी, ये सब लोग गांधी जी और विनोबा जी से ही जुड़े हुए थे, इसलिए हमारा जन्म हुआ तभी से हमने इन सब लोगों को देखा है। तो ये हमारा घर ही है, मेरा घर ही है। इसमें विशेषता, यहाँ आने में मेरी विशेष कुछ नहीं है, अपने ही घर में मैं रहा। इतना था कि बचपन में गोपुरी में रहते थे तो वहाँ से स्कूल में जाते थे, 4 साल तक यानी मिडिल स्कूल तक हम स्कूल में गए। उस समय विनोबा जी ने कहा सब लोगों को कि ये जो शिक्षा आज मिल रही है आप लोगों को, ये कोई शिक्षा अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो इसलिए इस बेकार शिक्षा को छोड़ दो और दूसरी अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने स्कूल भी खोलने का तय किया था, पर मैं वो शिक्षा छोड़ने के बाद मैं सीधा ही विनोबा जी के पास में आ गया, उनके पास। तो उस समय विनोबा जी की यात्रा शुरू हुई थी, यहाँ से हैदराबाद के लिए वो पैदल गए थे, वहाँ सर्वोदय सम्मेलन के लिए। तो मैं भी सम्मेलन में पहुँच गया वहाँ पर पिताजी वगैरह के साथ में, और वापसी में भी 2-4 दिन यात्रा में रहा। फिर दूसरा कुछ काम आया तो 8 दिन वापस आकर फिर यात्रा में चला गया था। तो तभी से संपर्क आया इस भूदान, उसके बाद भूदान शुरू हो गया तो भूदान यात्रा में रहने का मौका आया। वरोड़ा में बाबा आमटे जी का नया आश्रम आनंदवन वो शुरू कर रहे थे, तो विनोबा जी ने उसका उद्घाटन किया, उस सभी भी हम उनके साथ में रहने का मौका मिला। इस तरह से उसके बाद वर्धा आ गए, फिर बारिश का मौका मौसम समाप्त होने के बाद पंडित जवाहरलाल जी ने उनको प्लानिंग कमीशन के बाद ये 1st 5-year प्लान के बारे में चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया। तब विनोबा जी ने कहा कि देखो, हमारा तो कांचन मुक्ति का प्रयोग चला है तो हम तो पैदल ही चलते हैं, तो पैदल ही आऊँगा, मैं ट्रेन से तो नहीं आऊँगा। और दूसरे ही दिन 12 सितंबर को 1951 उन्होंने दिल्ली की ओर पदयात्रा शुरू कर दी। तो हम लोग यहाँ थे ही, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ में, कोई बात नहीं है, अपनी पढ़ाई तो रास्ते में भी हो सकती, कोई आश्रम में ही होती है, ऐसी बात नहीं है। और 3 महीने में अपने दिल्ली जाएंगे, पंडित जी से वगैरह बात करेंगे और 3 महीने में वापस लौट आएंगे, फिर यहाँ आश्रम में रहेंगे। लेकिन वो जो यात्रा शुरू हुई तो वो जो है विनोबा जी उस 13 साल तक वापस आए ही नहीं सके। 13 साल के बाद में यहाँ लौटे, क्योंकि दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर वहाँ से बंगाल होते हुए कन्याकुमारी तक यात्रा चली, कन्याकुमारी से केरल होकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब होकर श्रीनगर तक यात्रा गई। उसके बाद में भी फिर मध्य प्रदेश वगैरह होके आसाम तक फिर से जाना हुआ, और फिर आसाम वगैरह घूम करके सब देख करके वहाँ का भूदान का काम चला, ये सब करके विनोबा जी 1964 में फिर उसके बाद वापस आए।
0: अच्छा, तब तक आप यहाँ थे या विनोबा जी के साथ थे या यहाँ थे?
2: मैं उसमें से काफ़ी समय विनोबा जी के साथ में था, लेकिन कई बार वो एक एहसास करते थे कि भाई हमारे बुज़ुर्ग कार्यकर्ता हैं तो उनके साथ कोई सेवक नहीं है, तो मुझे भेज देते थे। दादा धर्माधिकारी के साथ एक बार कोई सेवक नहीं था तो मुझे साल भर उनके पास भेज दिया, उनके साथ जाओ। मैं अच्युत पटवर्धन जो थे 2 साल उनके साथ में गया। विनोबा जी के भाई थे शिवाजी छोटे भाई, उनके पास 1-7 साल गया। इस तरह से अलग अलग कामों के लिए भी भेजते थे वो, अलग अलग सेवकों के सेवा के लिए भी भेजते थे। उनकी कोई बाद में किताबें भी छपती रही, तो 1960 से करीब करीब सभी जितनी नई किताबें उनकी निकली उसको सबका उनके साथ में काम करना, छपाई करवाना, प्रेस में जाना, ये सब काम मैंने ही किए। तो उसमें बनारस में भी हमारा मुख्य केंद्र था छपाई का, तो कई बार कुछ किताबें छापने के लिए बनारस जाके रहना पड़ता था। एक बार असमिया भाषा का हुआ तो एक बार गुवाहाटी में जाके रहना हुआ। तो इस तरह से काम के निमित्त से भी कभी कभी 2-2 महीना 3-3 महीना ऐसा किताब छापने के लिए भी जाना पड़ता था। फिर उनका कहना था कि अपन खादी का काम करते हैं, सब वस्त्र विद्या अच्छी तरह से आनी चाहिए। कताई तो हम उत्तम करते ही थे। मेरा पहला जो थान बुनकर आया तब मेरी उम्र 4.5 साल की थी, तो इसका मतलब है उसके कुछ महीने पहले तो मैंने कताई शुरू की होगी। तो जो 6 या 8 गज का आया वो थान, तो ये तो बाद में राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति को पता चला तो उनने वो कपड़ा दिल्ली मंगवाया, दिल्ली देखने के लिए मंगाया, फिर वापस पहुँचा दिया। तो तब ये तो कताई वगैरह तो हम सब जानते थे, लेकिन संपूर्ण विद्या आनी चाहिए। तो फिर इसलिए मैं गोपुरी रहा भी, तो उसके लिए अध्ययन भी हुआ। तो खेत में से कपास चुनकर लाने से लेके पुनी बनाना पीना और फिर उसके बाद कताई, उसके बाद बुनाई, और ये सारी प्रक्रियाएं जो है अच्छी तरह से होनी चाहिए। फिर 1 सूती 2 सूती दुपट्टा तो सब प्रकार की वस्त्र, ये जो सूत है उसको भी बुनना आना चाहिए, इस तरह की सारी विद्या। फिर उसका गणित जो होता है वो गणित आना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं यहाँ रहा। इसमें एक बार उनका अपना सब गाय का काम चलता है, तो गाय का भी काम अच्छी तरह से आना चाहिए। तो फिर 3 महीने गौशाला में साफ सफाई, गोबर उठाना वगैरह, उसका ट्रेनिंग हुआ। फिर उसके बाद में उनके गायों की, जानवरों की बीमारियां होती है, उनके लिए दवा बनाओ, उसके लिए कुछ काम करो। तब तो ये सब इंजेक्शन रेडीमेड दवाइयां होती नहीं थी, तो वो सब करने को कहा। फिर उसके बाद में गौशाला का हिसाब कैसे रखते हैं, दूध कैसे का हिसाब रखते हैं, बेचा किया, उसका भी हिसाब देखने को कहा। तो इस तरह से सब हिसाब किताब के साथ में सब ज्ञान होना चाहिए। तो वर्धा में गोपुरी में ही हुआ। इतना ही नहीं कि अपना स्टॉक लेते हैं, तो खादी भंडार जो है, स्वराज्य भंडार हमारे यहाँ चलते हैं, इन सब का स्टॉक लेने का भी काम देते थे। तो सुबह से 7 बजे से बैठते थे तो रात में 9 बजे तक हम लोग पूरा, कोई और भी मेरे साथ भी लोग रहते थे, बच्चे भी रहते थे, बड़े लोग भी रहते थे, हम वो स्टॉक रहना, हर एक कपड़े का टुकड़ा गिनना, और आज के जैसा आसान काम नहीं था। उस समय में तो रुपया आना पैसा ये है उसके हिसाब से पैसे निकालने पड़ते थे सब है। तो वो सब 2-3 बार 2-3 जगह किया, तो कल्पना आ जाती है कि काम किस तरह से सारे करने होते हैं। तो ये सब हमने इसी बीच में किया।
0: असली पढ़ाई उन्होंने प्रैक्टिकली आपसे करवाई। आपको विनोबा की कौन सी चीज सबसे ज्यादा भा गई?
2: ऐसा है, विनोबा जी की बहुआयामी व्यक्तित्व है, उनकी इतनी बातें हैं कि वो कहना मुश्किल है। और हम आज तक देख रहे हैं कि अब मेरी उम्र 78 साल की हो गई, इस बीच में हमने 18-20 साल खर्च करके उनके संबंध संपूर्ण साहित्य को तैयार किया, सब किया, फिर भी आज भी हमारे अनुभव में आ रही आ रही विनोबा जी की ये बात तो हम अभी तक समझे ही नहीं थे। तो हमको नई नई बातें उनकी समझ में आ रही है। तो ये है कि इतनी प्रतिभाशाली रही, इस तरह का उनका व्यक्तित्व था कि हमको तो ऐसा दूसरे किसी की जानकारी नहीं है उसके बारे में। लेकिन बच्चा था, छोटा था, जब 13 साल की उम्र के बाद में यहाँ से दिल्ली पदयात्रा शुरू हुई, तब हमने एक चीज़ हमारे ध्यान में आ गई कि विनोबा जी इतना भूदान का काम कर रहे हैं, 500 कार्यकर्ताओं को रोज़ मिलना होता है, 100 एकड़ दान जमीन का मिल रहा है, उसकी व्यवस्था करनी होती है, तो इतने सब लोगों से मिलना जुलना, सब तरह के काम, ये सारे चलते थे। लेकिन हरदम ये भास होता था कि इस मनुष्य को स्पर्श ही नहीं है, ये बिल्कुल इससे अनासक्त है। इतना सब करते हुए भी उनमें आसक्ति नाम की अपने काम के बारे में, भूदान के बारे में और किसी के बारे में कहीं आसक्ति का जरा भी स्पर्श हो किसी व्यक्ति के बारे में, ऐसा हमको देखा नहीं। तो बचपन में ही हमारी एक चीज़ ध्यान में आ गई कि ये तो सब चीज़ जो है ये अनासक्त पुरुष का सारा लक्षण है, वर्णन है और उनका व्यवहार है। तो उनके बातों से जितना हमारे समझ में नहीं आया उतना वो हम जीवन देखने से उनका समझ में आया। तो शुरू में ये देखा और अंत में क्या देखा कि अंत में जब उन्होंने तय कर दिया था कि अब ये देह छोड़ना है तो उस समय हम यहाँ थे ही सामने, और हमारे समझ में आ ही गया था कि अब ये देह छोड़ने वाले हैं ये सब ये। लेकिन यहाँ का सारा वातावरण ऐसा बन गया था कि किसी को भी उसमें कोई दुख की शोक की लहर भी एक जरा सा भी भास किसी को नहीं होता था। ये कैसा हुआ, इतनी बहनें थी यहाँ, सैकड़ों लोग हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे, देश भर से इकट्ठा हो गए थे, सबको पता चल गया था। और जब वो गए और ये समाचार दिया तो एक बहन ने तो नामदेव का एक भजन गाना शुरू कर दिया, काल देहासी आला खाऊ आमी आनंदे नाचू गाऊ, एकदम स्वयंस्फूर्त शुरू हो गया। अब ये वातावरण कैसे बना, इतने लोग इतने वर्षों से साथ हम रहे और सभ्य, लेकिन दुख शोक के तो बात ही नहीं है कि बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, इस तरह का जो वातावरण हुआ तो ये उनका व्यक्तित्व है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं हुआ। अरे कैसे हुआ हम नहीं जानते हैं, पर न जानते हुए भी उसका अनुभव लिया और उसका अनुभव लेकर के आज तक, आज उनको गए 34 साल हो गए, क्योंकि हमको कभी किसी को ये भास नहीं होता है कि विनोबा जी यहाँ है ही नहीं है, वो गए करके। अभी भी कल परसों भी कुछ लोग आए वही पूछ रहे थे, मैंने कहा हमको भास ही नहीं है, तो हम वो विषय में सोचते नहीं, आपको क्या लगता है, कुछ नहीं लगता, वो भास ही नहीं होता है। विनोबा जी जाने लगे तो हमको कई लोगों ने, बुजुर्गों लोगों ने कहा भी कि अब वो तो विनोबा जी तो देह छोड़ने वाले हैं, आप लोगों को कुछ पूछना है उनको तो पूछ लीजिए। तो हम लोगों में से किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। हमने कहा कि आज इतने वर्षों तक उनके साथ रहकर जो समझ में नहीं आया तो अब हमको आखिरी के मिनट में वो बताएंगे और समझ में आ जाएगा क्या, वो विषय ही नहीं निकला, बस आनंद महोत्सव के रूप में भगवान का नाम लेते रहे और सब लोग आनंद से रहे, इसलिए जो रूप सब देखा। हाँ, तो बड़े बड़े लोग बाद में भी हमको मिले, वो कहते ये कैसे हुआ, कैसे हुआ तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हजारों लोगों ने देखा है, उनके सामने ये सारा हुआ है, कहीं शोक का वातावरण नहीं, तब भी नहीं था, आज तक कभी ये नहीं हुआ है। तो ये जो उनका प्रारंभ में जी अनाशक्ति देखी और ये अंत में भी उनका ये जो देखा, तो हमारे जीवन में इसी की मुख्य समृद्धि है और यही जीवन का तरीका हो सकता है, ये शिक्षा हमसे उनसे मिलती है
0: जी। जैसे कि इतनी उम्र हुई आपकी, फिर भी हमें नहीं लगता कि एक नौजवान की तरह आप सब लोग काम करते हैं। हम पिछले कई महीनों से यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, ये प्रेरणा, ये प्रेरणा स्रोत विनोबा जी आपके रहे हैं। आपको कभी ऐसा आभास नहीं हुआ कि ये, जैसे हम कहते हैं ऐसे भगवद गीता में, जैसे गीता ही तो उन्होंने ही अपनी माँ को समर्पित की, लेकिन जो है सभी जीव जो है मोह माया मद मत्सर अहंकार से परे नहीं है, तो इससे परे आप कैसे चले गए?
2: ये इससे परे हम चले गए ऐसा मानना नहीं चाहिए, ऐसा इससे परे नहीं चले गए हैं, लेकिन इससे परे अपने को जाना है, इसका दर्शन इसका भान होता है और वैसे जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो होता है, जब ऐसे लोगों के संगति में रहते हैं तो जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं जिसके कारण हम मोह में फंसते हैं, उसकी कोई कीमत ही हमको मालूम नहीं होती है। जब किसी चीज़ को आपको बिल्कुल कीमत नहीं मालूम पड़े तो उसके प्रति मोह वो होता ही नहीं है। तो लेकिन सूक्ष्म जो है, सब तरह के दोष जो है, वो अंदर से आसानी से जाते नहीं हैं, वो तो भगवत कृपा होगी तब जाएंगे। स्थूल रूप से जो है इसकी कोई कीमत नहीं है। विनोबा जी के जीवन में कभी हमने इन सब चीज़ों की कीमत देखी ही नहीं है, और उनके आसपास आने वाले जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनको भी देखा कि जिनका सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था, आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित था, ऐसे लोगों को ही हरदम देखने को मिला। तो ये जो है सांसारिक चीज़ें हैं, इसके कोई आकर्षण का कोई कारण ही कभी देखने को ही नहीं मिला हमको, तो हमारे में वो उसका आकर्षण नहीं हुई उसकी बड़ी बात नहीं, कि इस वातावरण में था ही नहीं वो वहाँ पर कहीं, अरे इसलिए उसका आकर्षण नहीं। और सूक्ष्म में जो चीज़ें हैं राग द्वेष आदि, ये जाना आसान नहीं है, उसके लिए तो भक्ति चाहिए उतनी, भगवत कृपा चाहिए उतनी, वो तो जब होगा तब होगा
0: जी। आज हम देखते हैं बाहरी परिसर में कि भाई भाई चारा नहीं रहा, दोस्त दोस्त के कुटकाल स्थान चलते रहते हैं। आज के युवक जो है वो व्यसनाधीनता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: ऐसा है, ये सब जो दोष जो आपने गिनाए इसकी सारी जिम्मेवारी हमारी है। युवक आए तो कहाँ से हुए हैं, हमारे सामने ही बड़े हुए, हमने उनको संस्कार दिए, हम ही सब कुछ कर रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं। तो इसका मुख्य कारण है हमारे जीवन में से वो चीज़ हट गई है, हमारे जीवन में सब ये चीज़ें गलत चीज़ें आ गई है, और उसको देख देख करके वो भी रहते हैं करते हैं। इसलिए उसकी बच्चों के लिए मुख्यतः जिम्मेवारी हमारी होती है कि वो बड़ों को देख करके उनका व्यवहार होता है। तो केवल उनको उपदेश देने से नहीं होगा, हमको अपने को सुधारना पड़ेगा, तब बच्चों पर असर पड़ेगा। केवल ये कि किताब का कोई लेख या पाठ नहीं पढ़ाना है उनको कि पढ़ो और वो सीख लेंगे। हम कहते हैं बच्चों को कि भाई सिगरेट बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, और बाप तो बीड़ी सिगरेट पीते ही है, वो कभी सीखेंगे आपके बात को मानेंगे क्या? कभी नहीं मानेंगे। एक बात ये हुई। दूसरी बात जो है, हमारी शिक्षा की जो पद्धति है ये कुछ पद्धति ही नहीं है, इसमें शिक्षा में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नौकर तैयार करने की शिक्षा पद्धति है। इसलिए इसमें जो है कोई प्राण ही नहीं है। फिर भी आज के विद्यार्थी उस हिसाब से देखे तो काफ़ी अच्छे हैं हिंदुस्तान में। अगर ये जितनी रद्दी शिक्षा होते हुए भी इतने अच्छी तरह से विद्यार्थी और जवान लोग व्यवहार करते हैं तो ये तो बड़ी विशेष बात है, ये हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। लेकिन नहीं तो इतनी ऐसी रद्दी शिक्षा में मुझे नहीं लगता कि ऐसी हम लेते तो हमारा क्या हल हो जाता। दूसरा, इसके साथ साथ शिक्षा के साथ हमारा आजकल एक भयानक एक यहाँ शुरू हुआ है, अंग्रेजी भाषा तो हम भी सीखते थे, लेकिन आजकल जिस तरह से अंग्रेजी मीडियम चालू हो गया है, इसके कारण भारतीय संस्कार, भारतीय जो नैतिक और आध्यात्मिक जीवन है, उसके संस्कार बच्चों को मिलते ही नहीं है। और जितना बड़ा होता जाता है, अंग्रेजी भाषा से नुकसान नहीं है, अंग्रेजी भाषा तो हमने कहा ना, हम भी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, रोज होते हैं, लेकिन अंग्रेजी मीडियम के कारण ये बच्चे न अपनी भाषा जानते हैं न अंग्रेजी जानते हैं, अधिकतर लोगों की दुर्दशा हो जाती है। इसलिए ये बहुत बड़ा एक कारण है जो भारत का जो वातावरण बिगड़ रहा है, या सहिष्णुता की बात करते हैं, ये जो पॉलिटिकल असहिष्णुता कहती है उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो उन्हीं लोगों के चित्त में असहिष्णुता है जो शिकायत करते हैं। लेकिन ये जो वातावरण बिगड़ रहा है इसका एक बहुत बड़ा कारण है अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा, अंग्रेजी भाषा की नहीं। तो वो आपकी भाषा उत्तम आए सबकी है, उसके बाद अंग्रेजी भी पढ़िए तो ये अच्छा रहेगा, और उसके बाद अंग्रेजी अच्छी पढ़ी जाएगी, आज के जैसे नहीं होगी। तो इसके कारण आज बच्चे हमारी जो प्राचीन परंपरा है उससे बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। इसके बहुत अनुभव आए हैं, हम लोगों ने बात की है, कई लोगों ने अपने पालक है उन्होंने बच्चों को अपनी मराठी या हिंदी भाषा में पढ़ाई की उन्होंने, तो उन बच्चों को देखते हैं तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा तेजस्वी और अच्छे निकलते हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी आपत्ति के जैसे ही आज भारत में आई हुई है, और ये सब चीज़ें दूर नहीं होगी, शिक्षा, शिक्षा की पद्धति और ये शिक्षा का मीडियम जो है ये नहीं होगा, तो आज जो बच्चे हैं अभी हालत जो है वो मैं काफ़ी अच्छे हैं ऐसा ही समझता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस श्रृंखला में आप जुड़े, इसलिए एमगिरी की ओर से मैं धन्यभागी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: ऑन इन एनी वेयर रेडियो मन भवन 90.8 एफएम ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी पहाड़ों पर होती हुई मूसलाधार बारिश को देखा है? जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी सारा का सारा पानी तेज गति से ढलान की तरफ बहता हुआ नीचे की तलहटी में घाटियों के अंधेरे में समा जाता है और पहाड़ पहले जैसा ही सूखा रह जाता है। हमारी यह जो जवानी है, हमारा यह जो सांसों की ताजगी और मन का उत्साह है, यह भी ठीक उसी पहाड़ पर बरसे पानी की तरह है। कल तक जो ताकत हमारे पास थी, आज वह ढलान पर बह चुकी है। कबीर साहब आज हमें समय के इसी तेज बहाव और जीवन के सबसे बड़े सच का आईना दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। कबीर, यहूं तन कत गया जो मन होता काली। कबीर, यहूं तन कत गया जो मन होता काली। डुंगरी बूठा मेहजू गया निबाणी चाली।

कालीन। श्रोताओं, कबीर साहब जीवन के बीत जाने पर एक गहरा और विचारणीय सवाल उठाते हुए कहते हैं, कबीर यहूं तन कत गया, हे मनुष्य तू जरा देख कि यह जो तेरा तन यानी स्वस्थ और बलशाली शरीर था यह कत गया यानी कहाँ चला गया। जो मन होता काल ही, और वह मन जो कल तक कितनी सारी योजनाओं सपनों और अहंकार से भरा हुआ था, जो कल तक खुद को अजेय समझता था, आज उसकी वह ताकत और उमंग कहाँ गायब हो गई। हम तेज क्षय का कारण समझाते हुए कबीर अगली पंक्ति में एक सुंदर रूपक देते हैं, डुंगरी बूठा मैं हजू, जैसे किसी डुंगरी यानी ऊंची पहाड़ी पर मेह यानी बादलों की बारिश यानी बरसात तो बहुत जोर से हुई है, गया निबानी चाली, पर वह पानी पहाड़ पर एक पल भी नहीं ठहरता, वह तेजी से बहकर सीधे निबानी यानी नीचे की ढलान और तलहटी में चली जाती है। ठीक उसी तरह हमारा यह जीवन और हमारे शरीर की ऊर्जा भी समय की ढलान पर बहकर काल के गाल में समा जाती हैं। तो यह दोहा बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद और वेदांत के काल चक्र का महासूत्र है। डुंगरी प्रतीक है हमारे अहंकार और हमारे उन्नत यौवन का, जहां हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ सदा के लिए रहेगा। मेह हमारे जीवन की उन सांसों और ऊर्जा का प्रतीक है जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, और निबाणी उस काल की अंतिम गति है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। कबीर यहां समझा रहे हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो शक्ति, जो संकल्प और जो दिन आज आपके पास

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में एक नई नज़र से देखने लगते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और इन दिनों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस श्रृंखला में हमें समझ में आ रहा है, नए बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उन्हें हम शामिल करते जाएं अपनी डे टू डे थिंकिंग में। और ऐसे में स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे बिलीफ सिस्टम्स थे, हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स थे जिन पर हमारा जीवन आधारित था कि स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, या स्ट्रेस जो है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या मेरे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए मुझे देना ही पड़ेगा उनको बदले, क्योंकि वो देख लिया हमने कि वो नहीं काम कर रहे थे। इनफैक्ट उसी के कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो जो ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जो डिप्लीशन हो रहा था, वो बच सकता है। आगे और जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो उन्हें हम नॉर्मल बांधकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने बातें की, स्ट्रेस की कई ऐसी सारी मिथ सामने आई हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम पर हम, मतलब उस पे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ था, और अगर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमने पिछली बार बात की थी जो शुरू में ही, कि बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी पूरी डेस्टिनी के लिए। मैं मतलब उसी पर काम करती जा रही होती हूँ।
1: इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। एंड रॉन्ग और राइट भी हम कहते हैं ना, कौन बताएगा रॉन्ग और राइट? एनी बिलीफ सिस्टम जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है वो मेरे लिए रॉन्ग है। वी आर नॉट गोइंग टू जनरलाइज इट एंड से कि ये सबके लिए रॉन्ग है। ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए रॉन्ग है। टेंशन नेचुरल है, ये बिलीफ पकड़ा तो टेंशन जब क्रिएट हुई अंदर उसको स्वीकार करते गए, टेंशन क्रिएट होती गई,
0: पर काम करने
1: काम नहीं किया, तो फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर वो मेरे आसपास जो है बच्चे परिवार उनके भी जीवन का हिस्सा बनता गया। तो हाउ कैन आई कॉल दैट दिस इज अ गुड और दिस इज अ राइट बिलीफ सिस्टम? आई नीड टू एक्सपेरिमेंट कि टेंशन अननेचुरल है, पीस रिलैक्सेशन स्टेबिलिटी ये नेचुरल है। वैसे भी वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता, चिंता तो मुझे हमेशा अप एंड डाउन लेके जाता।
0: अच्छा, इनमें इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, क्योंकि ज्यादा होते वो हमारे को पता चल जाता है कि वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा वरी।
1: सी, अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, जैसे अपने शरीर को लेते तो हमने कहा हेल्थ नेचुरल है। हमने कभी आपने कहा अपने आप को कि थोड़ा बीमार होना नेचुरल है? नहीं। तो हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ नेचुरल है, ये लक्ष्य लेकर आप हम अपने शरीर का ध्यान रखते तो वो हमेशा ठीक ही रहता, कभी कभी फिर थोड़ा सा हो जाता। लेकिन जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता तो हम तुरंत अपने आप को कहते हेल्थ नेचुरल है, ये कहाँ तकलीफ हो रही है, इसका जल्दी से चेकअप कराओ और इसको ठीक करो। लेकिन अगर हम अपने उस बिलीफ को चेंज करें और कहें थोड़ा थोड़ा बीमार होना तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बीमार होना नेचुरल है।
0: लेकिन ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में हम ये कहने लग गए हैं कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम इतने टेंशन में होते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो थोड़ा सा सर में दर्द, थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा कुछ खराब होना नेचुरल, ब्लड प्रेशर भी है।
1: एंड देन व्हाट इज योर डेस्टिनी विद दैट, कि वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ही चलता है। तो जो सर दर्द नेचुरल नहीं है उसको स्वीकार कर लिया एज नेचुरल, नहीं बड़ी बड़ी चीजें तो खैर जो हो अगर हो, लेकिन सर दर्द के साथ भी क्यों जीवन में चले, बैक एक के साथ भी क्यों चले, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें

0: पता ही नहीं था
1: कि कैसे मेहनत करनी है. जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल. नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल? क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया, उसका कोई इलाज नहीं पता चला. क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते, सर दर्द के लिए सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है. नाउ व्हाई वी सेड इट्स नेचुरल? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में. और वहां हम मेहनत नहीं करते, या वहां हमें पता नहीं कि कैसे मेहनत करनी है. तो जैसे हमने टेंशन को स्वीकार किया, तो टेंशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है हेडेक. टेंशन का बाय प्रोडक्ट है ये बैकएक, ये अल्सर्स. तो फिर क्योंकि उनका कोई फिजिकल लेवल पर इलाज नहीं था, उनका इलाज ही था कि अपने थॉट्स को चेंज करना. वो हमने कहा वो तो कैसे होंगी, क्योंकि पेनफुल थॉट्स तो नेचुरल है. तो अगर दर्द वाली थॉट्स, गुस्से वाली थॉट्स नेचुरल है, तो उनका जो आफ्टर इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो भी तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा ना मुझे. तब मैंने हेडेक को, ये बैकएक को, इनको भी नेचुरल ही ले लिया. एंड नेचुरल नेचुरल बोलते बोलते आई एम कैरिंग ऑल दिस पेन इन माई लाइफ, इमोशनल पेन ऑल्सो, फिजिकल पेन ऑल्सो. फिर ये जो पेन था ये मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देने लगा. आएगा ही, मैं फिजिकली दर्द में हूँ, इमोशनली दर्द में हूँ, व्हाट डू आई गिव इन टू माई रिलेशनशिप्स. फिर मेरे रिलेशनशिप्स में थोड़ा थोड़ा टक्कर, थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार ये होने लगा, एक दूसरे से हम थोड़ा सा खिंचे रहने लगे. फिर उसको भी हमने क्या कहना शुरू किया,
0: नेचुरल है. यस, रिश्तों में खिंचाव तो, मतलब इतनी तो बात चलो ठीक है ना, इतना तो होता ही है.
1: रिश्तों में खिंचाव नेचुरल है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये सब होना, ये तो नेचुरल है. अब हमारी
0: हो जाता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो.
1: तो नेचुरल नेचुरल करते करते फिर कितनी सारी अननेचुरल चीजों को
0: हमने नेचुरल की पदवी दे दी.
1: क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चीज थी उसको ही हमने कहा ये थोड़ा थोड़ा नेचुरल है.
0: एक्चुअली हमारे पास इलाज ही नहीं थे, सच्ची, वेरी ट्रू. यू नो, हमने अगर थोड़ा सा भी कोशिश भी की, हमें समझ में ही नहीं आया क्या करें, तो हम फिर आगे तो बढ़ना ही है, तो आगे बढ़ते.
1: और टेंशन थोड़ा थोड़ा नेचुरल है ये कहने पर, थोड़े की डेफिनेशन या थोड़े का पैरामीटर कौन फिक्स करेगा कि थोड़ा क्या? क्योंकि हमारी टेंशन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है. आज हमने कहा सिचुएशंस स्ट्रेस क्रिएट करती, तो आज छोटी मोटी सिचुएशंस है, हमने कहा थोड़ा बहुत स्ट्रेस ये तो नेचुरल है. लेकिन क्या कल सिचुएशन मुझे बताकर आएगी? टुमारो कुड बी अ बिगर सिचुएशन. कल हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस हिट्स में, कल हो सकता मेरे घर पे कुछ हो जाए, बिजनेस अप एंड डाउन हो जाए, नेचुरल कलामिटी हिट. आई मीन इट्स अनप्रडिक्टेबल जिन समय में हम चल रहे हैं. तब क्या करेंगे? तब क्या हम अपने टेंशन पर काम कर पाएंगे कि वो थोड़े वाले पर ही रखना है, टेंशन को बढ़ाना नहीं है? विल आई बी एबल टू, लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आज मेरा टेंशन नंबर 2 पर है, लेकिन कल परिस्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई, विल आई बी एबल टू कीप इट एट नंबर 2? इट विल इमिडिएटली गो अप. एंड तब हम कहें क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी,
0: ये तो होना ही था,
1: होना ही था.
0: अच्छा, एक और बात बहुत से लोग कहते हैं, इस पर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये छोटी छोटी बातों पे तो बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो इन्हें इरिटेट करती है, लेकिन कोई बड़ी बात आ जाती है ना अगर, तब स्टेबल रहते हैं.
1: सो
0: व्हाट इज दैट पर्सनालिटी?
1: इट इज अ पर्सनालिटी जो सिचुएशंस को, जब सिचुएशन बड़ी आ जाती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लेते हैं. एक होता है छोटे छोटे लेवल्स पर इरिटेट होना, यू नो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. एक होता है बड़ी जब सिचुएशन आती है, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन है कि इस सिचुएशन को तो मैंने फेस करना है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बहुत कंप्लीट है कि मुझे सिचुएशन को क्रॉस करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है.
0: अच्छा, जो बाकी छोटी छोटी चीजें जो थी उनमें नहीं थी.
1: उनमें तो वो सिचुएशन नहीं थी ना, उनमें उन्होंने इरिटेशन को अपना नेचुरल बिहेवियर कर लिया. अब बड़ा कुछ ट्रेजेडी हिट कर गई फैमिली में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, सबको इसके साथ मैंने लेकर जाना है. ऐसे समय पर वो अपनी स्ट्रेस को अपने साथ अंदर रख लेते हैं, सिचुएशन को क्रॉस करते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि विद स्टेबिलिटी. अगर वो छोटी चीज़ में स्टेबल नहीं थे तो बड़ी में स्टेबल होंगे, वो नहीं है. लेकिन सिचुएशन को क्रॉस करना है, उस समय वो उसको अंदर रख लेते हैं. नॉट, यू नो, जैसे अगर घर में सारे टेंशन में है तो आई इमिजिएटली से एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे ये और भी टेंशन में आ जाए, तो मैं तुरंत अपना बिहेवियर अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से करता हूँ बट नॉट नेसेसरी थॉट्स को, वो फिर उनको खुद को ही पता है, वो उनको खुद पता है. और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता कि सिचुएशन को तो वो क्रॉस कर लेते, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर परिवार में देर इज अ डेथ इन द फैमिली, सब लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत रो रहे हैं, तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, नहीं हमने इसको क्रॉस करना है, तो वो एकदम अपने वो दर्द को अंदर ही दबा देते हैं, पूरा वो जो है सिचुएशन उसको क्रॉस करते, लेकिन कई बार उसके बाद वो
0: ब्रेकडाउन
1: हो जाते हैं एंड यू नो एवरीथिंग. तो इसको हम कहेंगे नॉट के स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसको अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है. तो हम जिस लेवल की बात करें कि वो अंदर क्रिएट ही ना हो, हम छोटी छोटी बातों में पहले ट्राई करें कि हमें स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, फिर बड़े वाले में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बड़े वाले को नेचुरली क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन स्टार्ट छोटे छोटे वाले सिचुएशन से करना पड़ेगा. कई बार हम समझते कि स्ट्रेस जो है वो एक एलिमेंट, एक बीमारी की तरह है, कि क्या एक डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं,
0: तो हो ही नहीं पाएगा.
1: क्या सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ. जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता सो वी गो एंड चेक आवर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ पैरामीटर अफेक्टेड है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ. जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता सो वी गो एंड चेक आवर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ सिमिलरली रोज सुबह उठकर अपने थॉट्स की पल्स को चेक करो, कैसी वाली है, बीट कैसी है, नेचुरल है, ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट चल रही है. अब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है हम तुरंत कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है, हम ये नहीं रियलाइज करते ये हार्ट बीट फास्ट हुई क्यों, इससे पहले यहाँ कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और डेफिनेटली बहुत नेगेटिव क्वालिटी का चल रहा है जिसकी वजह से ये हार्ट बीट फास्ट हुई, ये पल्स रेट फास्ट हुई. तो जब वो स्ट्रेस हमारे फिजिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता तब हमें लगता कि अब इसका इलाज करवाना ज़रूरी है. अगर उसको उसी लेवल पर ठीक कर दिया होता तो फिर वो फिजिकल लेवल पर आता ही नहीं. जो हमने पिछली बार बात की कि स्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता ही करता, लेकिन सबसे पहले वो मेरी कंसंट्रेशन पावर पर इफेक्ट कर जाता, मेरी मेमोरी पावर पर इफेक्ट करता, मेरी निर्णय शक्ति. कभी भी अगर आप स्ट्रेस के अंडर हैं डोंट टेक अ डिसीजन, क्योंकि वो डिसीजन हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि तनाव के अंदर यहाँ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता और स्ट्रेस हमारी फिजिकल इस कॉस्ट्यूम पर, इस शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करता है. अगर किसी के अंदर चिंता करने की आदत है, वरी वरी वाले थॉट्स, तो फिर इनडाइजेशन, अल्सर ये उनके लिए बहुत कॉमन होता. एंगर है तो कैंसर, यू नो रिजेंटमेंट पकड़ कर रखा है किसी के प्रति तो वो क्रिएट हो जाता. बहुत दर्द वाले थॉट्स हैं, हार्ट पे इफेक्ट होता, ब्लॉकेज हो जाती क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज करके रखा है. सो वो हमें चेक करना है कि माइंड के लेवल पर अपने आप को ब्लॉकेज को क्लीन करते जाएं ताकि फिजिकल लेवल पर वो क्रिएट ही नहीं होना चाहिए.
0: दैट्स व्हाट टाइम्स वी से दैट इफ यू आर अंडर स्ट्रेस टेक अ ब्रेक, यू नो इट विल एक्चुअली टेक यू आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, और उसके बाद आपके आप फ्रेश होकर एक बार फिर से जिंदगी को, मतलब जिस भी सिचुएशन में थे वो शुरू कर सकते हैं. डज इट रियली हेल्प?
1: टेम्प्ररी यस, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे वर्क पे हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उस स्ट्रेस से गुजरे, तो आपको लगता है एग्ज़ाम के बाद लेट्स टेक अ हॉलीडे, या बहुत ज़्यादा तनाव है चलो ऑफिस से तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर कहीं चले जाते, लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन. इट इज़ अ टेम्प्ररी, इट्स अ रिलैक्सेशन जिसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं. वो वैसे भी अच्छा लगता है कि कुछ भी आप जो रोज करते आए हैं उससे आप डिफरेंट कर लेते हैं. जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने जाते तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ चली जाती. लेकिन कई बार तो लोग अपने तनाव को अपने साथ हॉलीडे पर भी कैरी कर लेते हैं. अच्छा, वो नहीं भी किया लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर भी तो वही सिचुएशन है. तो ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेस को फिनिश नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं 15 दिन के लिए कहीं और जाकर आता हूँ, मे बी आई गेट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. यस, तो रेस्ट हमारी बॉडी को तो रेस्ट देता, लेकिन माइंड को रेस्ट देने के लिए मुझे 15 दिन का हॉलीडे नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ सारा दिन बीच बीच में 1 मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा. क्योंकि ये माइंड ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे आप काम करो फिर 15 दिन, क्योंकि 15 दिन आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, माइंड तो फिर भी काम कर रहा है. इम्पोर्टेंट ये है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट कर रहा है. हॉलीडे पे जाना या रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, दिस इज ऑल ओके, ये एंटरटेनमेंट है, दिस इज अ चेंज, बट इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेस, इट इज नॉट सोल्यूशन फॉर स्ट्रेस. सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में है. और जब आप अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉर्मल रूटीन को एंजॉय करना शुरू कर देते तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वेंट लास्ट फॉर अ हॉलीडे, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज हॉलीडे की फीलिंग
0: बिकम्स अ हॉलीडे.
1: हॉलीडे की फीलिंग कब आती है? आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक. आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक कब होगा? जब मैं यहां अभी आई एम नॉट यू नो हैप्पी, आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस. I don't know when it happened last. क्योंकि अगर आप हर रोज को enjoy कर रहे हैं, हर रोज हल्के हैं, तो break लेकर क्या करेंगे? यही सब कितना, you know, you enjoy your work. आप जो कर रहे हो उसी के अंदर अगर आप right thought से उसको कर रहे हो, you're enjoying each day. You don't need to take a break for that than anything.
0: Very true. Somewhere वही stress को relieve करने के लिए हमने सोचा कि holiday या break लेते हैं, लेकिन वो break से आने के बाद
1: तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, क्योंकि टेंशन के कारण बाहर थे, टेंशन के कारण थे एग्जाम्स, टेंशन का कारण है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते, तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला है सिलेबस. टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते, तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला. फिर मैंने कहा मेरी टेंशन का कारण आप चेंज होते नहीं हो, तो फिर मुझे टेंशन में तो रहना ही पड़ेगा. That is how I accepted my tension as natural.
0: You know, कि situation तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब तो ऐसे जीना पड़ेगा, you know. Amazing, yes, this is what we actually accepted.
1: तब हमने कहा कि तब इसलिए अगर आप किसी से भी पूछो टेंशन होती है आपको, तो कहे समय ऐसा चल रहा है, समाज ही ऐसा है. क्यों? क्योंकि मेरे टेंशन का कारण कौन है? वो समाज. And समाज means everyone around.
0: सीधा वो यही बात है जवाब कि आपको नहीं होते. कोई ऐसी चीज है, यू नो, कोई ऐसी जगह है जहाँ से टेंशन ना हो. सो मेनी टाइम्स पीपल से
1: टेंशन से भागने वाली कोई जगह है. इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ इस बीमारी से, सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन. नो वन एंड नथिंग, नो वन. एंड जब हम कहते हैं नो वन मीन्स नो वन एंड नो सिचुएशन इज द कॉज ऑफ माई स्ट्रेस. दीज आर सिचुएशंस, दीज आर पीपल जो बाहर से आते. स्ट्रेस इज माई response to the situation. हाँ, परिस्थिति चैलेंजिंग है, लेकिन आपको नहीं पता क्या हुआ. हाँ, परिस्थिति बहुत चैलेंजिंग है. हमने कुछ दिन पहले ही देखा डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन माई फैमिली. अब इससे ज़्यादा बड़ी परिस्थिति कोई नहीं हो सकती शायद किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो बाहर है, वो परिस्थिति यहाँ है. उस परिस्थिति के रिस्पॉन्स में मुझे जो थॉट्स क्रिएट करने वो यहाँ है, ये मेरे हाथ में है, एक ही चीज है जो मेरे हाथ में है और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स आई क्रिएट. लेकिन उसी को मैंने सोचा कि यही मेरे हाथ में नहीं है, तो देन आई वेंट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल.
0: अमेजिंग, यस, यू नो.
1: सो द नेक्स्ट टाइम यू से मदर इन लॉ, द नेक्स्ट टाइम यू से चिल्ड्रन, एग्जाम, सिलेबस, जिससे ये मेरे हाथ में नहीं है लेकिन इनको रिस्पोंड कैसे करना, ये मेरे हाथ में है. वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि मेरा स्ट्रेस यहाँ क्रिएट होता, यहाँ कोई घुस नहीं सकता. स्ट्रेस है मेरी फियरफुल थॉट्स, स्ट्रेस है मेरी चिंता वाली थॉट्स, परिस्थिति उसी परिस्थिति में. और इसीलिए हम देखते एक ही बॉस है लेकिन अलग अलग लोग उनके अंडर काम करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हर एक का इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है. तो अब हमें समझ में आता कि स्ट्रेस प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट, स्ट्रेस इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है. और जो जितना अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देगा, उसको स्ट्रेस नहीं होगा. और जो जितना ब्लेम करता जाएगा औरों को, वो विक्टिम की तरह अपनी जीवन जीता जाएगा. मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है या मेरे साथ ऐसा हो गया या उन्होंने मेरा इतना, इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे करते जाएंगे. वी क्रिएटिंग अ डेस्टिनी ऑफ टेंशन, ऑफ स्ट्रेस एंड देयरफॉर ऑफ पेन. सो वन बिलीफ सिस्टम शिफ्ट कि स्ट्रेस मेरी क्रिएशन है, ये किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं आती है. आई क्रिएट इट एंड आई कैन एक्चुअली क्रिएट इट इवन इफ नथिंग इज हैपनिंग आउटसाइड. सब कुछ ठीक भी होगा ना. कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, सब ठीक चल रहा है बाहर, नथिंग इज रॉन्ग, तो भी उनको टेंशन है.
0: कुछ कुछ बाहर का सोच के या कुछ कुछ.
1: कई लोग कहते हैं कि इस बात की चिंता है कि कोई चिंता क्यों नहीं है आज,
0: ये क्या हो गया यार?
1: सब कुछ ठीक ठाक कैसे चल रहा है?
0: गड़बड़ होगा ही होगा.
1: सो देयर यू हैव गॉन एंड क्रिएटेड अ नेगेटिव थॉट इन रिस्पांस टू सब कुछ ठीक है, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला इसके बाद. एंड आपने गलत क्रिएट कर दिया ऑलरेडी उसी टाइम. जैसे ही हम उंगली ऐसे करते हैं, यू नो दे आर क्रिएटिंग, नहीं वो तो ठीक है, वो मुझे मालूम है, दैट्स वेरी कॉमन कि चार उंगली मेरी तरफ है. लेकिन जैसे ही हम उंगली बाहर करते, माई एनर्जी flows out. I disempower myself. Someone else is responsible. Totally, energy has flown out. Jaise hi I do this, my energy ka circuit is complete. It's here. I have the power. I can do it. I will do it. That's all. Wo aise hain. Wo kaise bhi hain. Paristhiti itni kharab hai. Kaisi bhi hai. Phir bhi thought kaun si create karna. Ab mujhe sirf ye seekhna hai. कि किन किन परिस्थितियों में मुझे कैसी वाली थॉट क्रिएट करनी.
0: मेरी फ्लाइट में सोने वाली है या मेरी ट्रेन छूटने वाली है.
1: अच्छा, तो आपकी ट्रेन छूटने वाली है, राइट. अब आप ट्रैफिक में अटके हैं, ना आपकी गाड़ी आगे जा रही ना पीछे हिल रही, आप घड़ी देखते जाएंगे. क्या कर उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप? ये स्ट्रेस क्रिएट करके या इस तरह से सोच के ट्रेन को रोक सकते हैं.
0: लेकिन वो कैसे मैं,
1: what can you do? You only have to sit there.
0: Can't do anything, but then it's so natural.
1: Nothing. You even then you will only have to tell yourself, hope I reach there on time. If not, then I will have to see now what next. And keep silent. That's all. इसके ऊपर तो एक भी second thought चलाने का क्वेश्चन ही नहीं है. क्योंकि जितने थॉट्स आप चलाएंगे, जो आपकी गाड़ी चला रहा होगा या जो आपकी ऑटो चला रहा होगा, आप उसको कहेंगे जल्दी करो, ये हो रहा है वो, आप पूरा एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट कर देंगे कि पता नहीं शायद कोई और नुकसान ना हो जाए फिर सड़क के ऊपर. यू नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से बोलने से इट्स, जिसने वो चला रहा है उसको भी पता है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, वो अपने बेस्ट चला रहा है. हमें उसको रिलैक्स्ड रहने देना, ताकि रिलैक्स्ड होगा तो वो बेस्ट चलाएगा.
0: क्योंकि हमारा एक और बिलीफ सिस्टम है कि जब तक मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगी वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा.
1: ट्रेन छूटने वाली है शायद, थॉट क्रिएट करो ट्रेन लेट हो जाए. हैव यू एवर ट्राइड दैट? आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स.
0: ओके,
1: एंड डू यू नो समथिंग, इट हैपेंस. द ट्रेन गेट्स लेट, द फ्लाइट गेट्स लेट. जस्ट स्टे स्टेबल एंड से आई हैव टू रीच, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है. फ्लाइट लेट हो जाएगी आज, एंड इट गेट्स लेट और द ट्रेन गेट्स लेट. सो मेनी टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस.
0: इट्स नॉट दैट आई हैव टू से प्लीज ट्रेन लेट हो जाए, आई जस्ट हैव टू से ट्रेन लेट हो जाएगी,
1: हो जाएगी. एंड हो या नहीं हो, यहाँ नहीं कुछ भी होना चाहिए. And that's all.
0: And then we'll think about it. अगर ट्रेन लेट होगी तब हम उसके बारे में सोचेंगे.
1: पहले से नहीं, you know, ये भी एक, अगर नहीं पहुंचे फिर क्या नेक्स्ट?
0: फिर क्या होगा? फिर क्या?
1: That is present. That is living in the present.
0: लेकिन फिर वो planning, वो फिर हम कहते हैं कि हमें अपने आप के आगे planning
1: तो करनी है. आपकी energy इतनी waste हो जाती है उतनी देर में.
0: I suddenly realized that, you know.
1: आपकी इतनी energy drain out हो जाती है कि उस moment पे जो right decision है आप ले ही नहीं पाते. आप stable रहें, station पहुँचे. फिर अगर train चली गई है, then at the present moment, now what next?
0: Without creating
1: पहले सोच के पहले कुछ कर तो नहीं सकते ना. तो being in the present means हर moment वो सोचें जो उस moment करना है. हमें लगता है पहले ही सोच के हम time बचा लेंगे और उस time जल्दी decision ले लेंगे. कई बार पहले सोचने के कारण आप कुछ और डिसीजन ले लेते हैं एंड एक्चुअली एट दैट प्रेजेंट मोमेंट समथिंग एल्स वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन.
0: दैट्स वेरी ट्रू.
1: बट यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर डिसीजन एंड यू क्रिएटेड योर डिसीजन 5 मिनट्स और 50 मिनट्स बैक. सिचुएशन हैज चेंज्ड, टाइम हैज चेंज्ड, यू नीड टू टेक योर डिसीजन नाउ. लेकिन हम कहते हैं हमने तो पहले ही सोच लिया था
0: और अब वो, क्योंकि वो डिसीजन लिया हुआ होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे. इट्स सो डिफिकल्ट टू चेंज दैट डिसीजन.
1: हम सोचते नहीं उस टाइम, हमने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया एंड वी थिंक कि हम बहुत टाइम बचा रहे हैं तो हम तुरंत वो जो पास्ट में डिसीजन ऑलरेडी सोच लिया हम उसको यूज कर लेते हैं. क्रिएटिविटी मीन्स हर मोमेंट को देखते हुए, क्योंकि सिचुएशंस हर चीज मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है. मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे सोल्यूशन सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता. ओनली इफ आई क्रिएट वन थॉट कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए एक्यूरेट हो रहा है. अगर मेरी ट्रेन मिस हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें भी मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है. डजंट मीन गो लेट फ्रॉम हाउस फॉर द स्टेशन. आप अपना हर चीज एक्यूरेट
0: करो. तो करनी पड़ेगी.
1: पहले आप अपना हर चीज प्लान एक्यूरेटली करो, टाइम पर पहुंचो. लेकिन अगर वो निकल गई है, नाउ व्हाट? नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम अदर ऑप्शन. एवरी मोमेंट ध्यान ये रखना. ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, ये तो ना छूट जाए ना, यही छूट जाता है, यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है.
0: ट्रू. तो समवेयर वो जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था वो अब समझ में आया कि वो मेरी अपनी क्रिएशन थी. सो इधर आई क्रिएट स्ट्रेस और आई क्रिएट हैप्पीनेस. What is it you would like to create? Again, it's amazing how this journey goes, you know. You start feeling so empowered and relaxed suddenly. कि सब कुछ जो हो रहा है उसके होते हुए भी मैं जो हूँ वो नॉर्मल हूँ. थैंक यू सो मच. शांति. आपके पास कोई सवाल है? हो सकता है कि कई बार क्योंकि डिस्कशन हो रहा होता है कुछ सिचुएशंस हम ना ले पा रहे हों. आप सामने रखिए ऐसी सिचुएशंस जहाँ आपको लगता है कि आपका चेंज बिलीफ सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर पाता, मतलब वही बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है और आप नहीं चेंज कर पा रहे, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आज इतना ही. आगे भी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: श्रोताओं नमस्ते। आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे गौतम भाई बजाज इनके साक्षात्कार की कड़ी।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
0: गौतम भाई, प्रोग्राम में आपका स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: जैसे कि सर, यह भूमि पुण्य पावन भूमि पवनार, और यहाँ पे विनोबा जी ने अपना पूरा जीवन बिताया। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो जीवन है उसके बारे में भी हम जानने के लिए उत्सुक है।
2: ऐसा है कि मेरे बारे में कोई विशेष नहीं है। हमारे पिताजी माताजी यही, और हमारे उसकी पहली की पीढ़ी दादाजी वगैरह नाना जी, ये सब लोग गांधी जी और विनोबा जी से ही जुड़े हुए थे। इसलिए हमारा जन्म हुआ तभी से हमने इन सब लोगों को देखा है, तो ये हमारा घर ही है, मेरा घर ही है। इसमें विशेषता, यहाँ आने में मेरी विशेष कुछ नहीं है, अपने ही घर में मैं रहा। इतना था कि बचपन में गोपुरी में रहते थे तो वहाँ से स्कूल में जाते थे। 4 साल तक यानी मिडिल स्कूल तक हम स्कूल में गए। उस समय विनोबा जी ने कहा सब लोगों को कि ये जो शिक्षा आज मिल रही है आप लोगों को, ये कोई शिक्षा अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो इसलिए इस बेकार शिक्षा को छोड़ दो और दूसरी अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने स्कूल भी खोलने का तय किया था, पर मैं वो शिक्षा छोड़ने के

0: बाद में सीधा ही विनोबा जी के पास में आ गया उनके पास। तो उस समय विनोबा जी की यात्रा शुरू हुई थी, यहाँ से हैदराबाद के लिए वो पैदल गए थे वहाँ सर्वोदय सम्मेलन के लिए। तो मैं भी सम्मेलन में पहुँच गया वहाँ पर पिताजी वगैरह के साथ में, और वापसी में भी दो चार दिन यात्रा में रहा। फिर दूसरा कुछ काम आया तो 8 दिन वापस आकर फिर यात्रा में चला गया था। तो तभी से संपर्क आया इस भूदान, उसके बाद भूदान शुरू हो गया तो भूदान यात्रा में रहने का मौका आया। वरोड़ा में बाबा आमटे जी का नया आश्रम आनंदवन वो शुरू कर रहे थे, तो विनोबा जी ने उसका उद्घाटन किया, उस सभी भी हम उनके साथ में रहने का मौका मिला। इस तरह से उसके बाद वर्धा आ गए, फिर बारिश का मौका मौसम समाप्त होने के बाद पंडित जवाहरलाल जी ने उनको प्लानिंग कमीशन के बाद ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया। तब विनोबा जी ने कहा कि देखो हमारा तो कांचन मुक्ति का प्रयोग चला है, तो हम तो पैदल ही चलते हैं, तो पैदल ही आऊँगा, मैं ट्रेन से तो नहीं आऊँगा। और दूसरे ही दिन 12 सितंबर 1951 उन्होंने दिल्ली की ओर पदयात्रा शुरू कर दी। तो हम लोग यहाँ थे ही, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ में, कोई बात नहीं है, अपनी पढ़ाई तो रास्ते में भी हो सकती, कोई आश्रम में ही होती है, ऐसी बात नहीं है। और 3 महीने में अपने दिल्ली जाएंगे, पंडित जी से वगैरह बात करेंगे और 3 महीने में वापस लौट आएंगे, फिर यहाँ आश्रम में रहेंगे। लेकिन वो जो यात्रा शुरू हुई तो वो जो है विनोबा जी उस 13 साल तक वापस आए ही नहीं सके। 13 साल के बाद में यहाँ लौटे, क्योंकि दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर वहाँ से बंगाल होते हुए कन्याकुमारी तक यात्रा चली, कन्याकुमारी से केरल होकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब होकर श्रीनगर तक यात्रा गई। उसके बाद में भी फिर मध्य प्रदेश वगैरह होके आसाम तक फिर से जाना हुआ, और फिर आसाम वगैरह घूम करके सब देख करके वहाँ का भूदान का काम चला, ये सब करके विनोबा जी 1964 में फिर उसके बाद वापस आए।
1: अच्छा, तब तक आप यहाँ थे या विनोबा जी के साथ थे या यहाँ थे?
0: मैं उसमें से काफ़ी समय विनोबा जी के साथ में था, लेकिन कई बार वो एक एहसास करते थे कि भाई हमारे बुज़ुर्ग कार्यकर्ता हैं तो उनके साथ कोई सेवक नहीं है, तो मुझे भेज देते थे। दादा धर्माधिकारी के साथ एक बार कोई सेवक नहीं था तो मुझे साल भर उनके पास भेज दिया, उनके साथ जाओ। मैं अच्युत पटवर्धन जो थे 2 साल उनके साथ में गया। विनोबा जी के भाई थे शिवाजी, छोटे भाई, उनके पास 1-8 साल गया। इस तरह से अलग अलग कामों के लिए भी भेजते थे वो, अलग अलग सेवकों के सेवा के लिए भी भेजते थे। उनकी कोई बाद में किताबें भी छपती रही, तो 1960 से करीब करीब सभी जितनी नई किताबें उनकी निकली उसको सबका उनके साथ में काम करना, छपाई करवाना, प्रेस में जाना, ये सब काम मैंने ही किए। तो उसमें बनारस में भी हमारा मुख्य केंद्र था छपाई का, तो कई बार कुछ किताबें छापने के लिए बनारस जाके रहना पड़ता था। एक बार असमिया भाषा का हुआ तो एक बार गुवाहाटी में जाके रहना हुआ। तो इस तरह से काम के निमित्त से भी कभी कभी 2-2 महीना 3-3 महीना ऐसा किताब छापने के लिए भी जाना पड़ता था। फिर उनका कहना था कि अपन खादी का काम करते हैं, सब वस्त्र विद्या अच्छी तरह से आनी चाहिए, कताई तो हम उत्तम करते ही थे। मेरा पहला जो थान बुनकर आया तब मेरी उम्र 4.5 साल की थी, तो इसका मतलब है उसके कुछ महीने पहले तो मैंने कताई शुरू की ही होगी। तो जो 6 या 8 गज का आया वो थान, तो ये तो बाद में राजेंद्र बाबू को, राष्ट्रपति को पता चला तो उनने वो कपड़ा दिल्ली मंगवाया, दिल्ली देखने के लिए मंगाया, फिर वापस पहुँचा दिया। तो तब ये तो कताई वगैरह तो हम सब जानते थे, लेकिन संपूर्ण विद्या आनी चाहिए। तो फिर इसलिए मैं गोपुरी रहा भी, तो उसके लिए अध्ययन भी हुआ। तो खेत में से कपास चुनकर लाने से लेके पुनी बनाना, पीना, और फिर उसके बाद कताई, उसके बाद बुनाई, और ये सारी प्रक्रियाएं जो है अच्छी तरह से होनी चाहिए। फिर एक सूती, दो सूती, दुपट्टा, तो सब प्रकार के वस्त्र ये जो सूत है उसको भी बुनना आना चाहिए, इस तरह की सारी विद्या। फिर उसका गणित जो होता है वो गणित आना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं यहाँ रहा, जिसमें एक बार उनका अपना सब गाय का काम चलता है तो गाय का भी काम अच्छी तरह से आना चाहिए। तो फिर 3 महीने गौशाला में साफ सफाई, गोबर उठाना वगैरह, उसका ट्रेनिंग हुआ। फिर उसके बाद में उनके गायों की, जानवरों की बीमारियां होती है, उनके लिए दवा बनाओ, उनके लिए कुछ काम करो। तब तो ये सब इंजेक्शन विंजेक्शन रेडीमेड दवाइयां होती नहीं थी, तो वो सब करने को कहा। फिर उसके बाद में गौशाला का हिसाब कैसे रखते हैं, दूध कैसे का हिसाब रखते हैं, बेचा किया, उसका भी हिसाब देखने को कहा। तो इस तरह से सब हिसाब किताब के साथ में सब ज्ञान होना चाहिए। तो वर्धा में गोकरी में ही हुआ, इतना ही नहीं कि अपना स्टॉक लेते हैं, तो खादी भंडार जो है, स्वराज्य भंडार हमारे यहाँ चलते हैं, इन सब का स्टॉक लेने का भी काम देते थे। तो सुबह से 7 बजे से बैठते थे तो रात में 9 बजे तक हम लोग पूरा, कोई और भी मेरे साथ भी लोग रहते थे, बच्चे भी रहते थे, बड़े लोग भी रहते थे, हम वो स्टॉक रहना, हर एक कपड़े का टुकड़ा गिनना, और आज के जैसा आसान काम नहीं था उस समय में, तो रुपया आना पैसा ये है उसके हिसाब से पैसे निकालने पड़ते थे सब है। तो वो सब 2-3 बार 2-3 जगह किया, तो कल्पना आ जाती है कि काम किस तरह से सारे करने होते हैं। तो ये सब हमने इसी बीच में किया।
1: असली पढ़ाई उन्होंने प्रैक्टिकली आपसे करवाई। आपको विनोबा की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा भा गई?
0: ऐसा है, विनोबा जी की बहुआयामी व्यक्ति तो है, उनकी इतनी बातें हैं कि वो कहना मुश्किल है। और हम आज तक देख रहे हैं कि अब मेरी उम्र 78 साल की हो गई, इस बीच में हमने 18-20 साल खर्च करके उनके संबंध संपूर्ण साहित्य को तैयार किया, सब किया, फिर भी आज भी हमारे अनुभव में आ रही है, अरे विनोबा जी की ये बात तो हम अभी तक समझे ही नहीं थे। तो हमको नई नई बातें उनकी समझ में आ रही है। तो ये है कि इतनी प्रतिभाशाली रही, इस तरह का उनका व्यक्तित्व था कि हमको तो ऐसा दूसरे किसी की जानकारी नहीं है उसके बारे में। लेकिन बच्चा था, छोटा था, जब 13 साल की उम्र के बाद में यहाँ से दिल्ली पदयात्रा शुरू हुई, तब हमने एक चीज़ हमारे ध्यान में आ गई कि विनोबा जी इतना भूदान का काम कर रहे हैं, 500 कार्यकर्ताओं को रोज़ मिलना होता है, सैकड़ों एकड़ दान ज़मीन का मिल रहा है, उसकी व्यवस्था करनी होती है, तो इतने सब लोगों से मिलना जुलना, सब तरह के काम ये सारे चलते थे, लेकिन हरदम ये भास होता था कि इस मनुष्य को स्पर्श परश ही नहीं है, ये बिल्कुल इससे अनासक्त है। इतना सब करते हुए भी उनमें आसक्ति नाम की अपने काम के बारे में, भूदान के बारे में और किसी के बारे में कहीं आसक्ति का जरा भी स्पर्श हो किसी व्यक्ति के बारे में, ऐसा हमको देखा नहीं। तो बचपन में ही हमारी एक चीज़ ध्यान में आ गई कि ये तो सब चीज़ जो है ये अनासक्त पुरुष का सारा लक्षण है, वर्णन है और उनका व्यवहार है। तो उनके बातों से जितना हमारे समझ में नहीं आया उतना वो हम जीवन देखने से उनका समझ में आया। तो शुरू में ये देखा और अंत में क्या देखा कि अंत में जब उन्होंने तय कर दिया था कि अब ये देह छोड़ना है, तो उस समय हम यहाँ थे ही सामने, और हमारे समझ में आ ही गया था कि अब ये देह छोड़ने वाले हैं ये सब ये, लेकिन यहाँ का सारा वातावरण ऐसा बन गया था कि किसी को भी उसमें कोई दुख की, शोक की लहर भी, एक ज़रा सा भी भास किसी को नहीं होता था। ये कैसा हुआ, इतनी बहनें थी यहाँ, सैकड़ों लोग, हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे, देश भर से इकट्ठा हो गए थे, सबको पता चल गया था। और जब वो गए और ये समाचार दिया, तो एक बहन ने तो नामदेव का एक भजन गाना शुरू कर दिया, काल देहा सियाला खाऊ आमी आनंद नाचू गाऊ, एकदम स्वयंस्फूर्त शुरू हो गया। अब ये वातावरण कैसे बना, इतने लोग इतने वर्षों से साथ हम रहे और सब है, लेकिन दुख शोक के तो बात ही नहीं है कि बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, इस तरह का जो वातावरण हुआ, तो ये उनका व्यक्तित्व है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं हुआ। अरे कैसे हुआ हम नहीं जानते हैं, पर न जानते हुए भी उसका अनुभव लिया, और उसका अनुभव लेकर के आज तक, आज उनको गए 34 साल हो गए, क्योंकि हमको कभी किसी को ये भास नहीं होता है कि विनोबा जी यहाँ है ही नहीं है, वो गए करके। अभी भी कल परसों भी कुछ लोग आए, वही पूछ रहे थे, मैंने कहा हमको भास ही नहीं है, तो हम वो विषय में सोचते नहीं, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, वो भास ही नहीं होता है। विनोबा जी जाने लगे तो हमको कई लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने कहा भाई कि अब वो तो विनोबा जी तो देह छोड़ने वाले हैं, आप लोगों को कुछ पूछना है उनको तो पूछ लीजिए। तो हम लोगों में से किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। हमने कहा कि आज इतने वर्षों तक उनके साथ रहकर जो समझ में नहीं आया, तो अब हमको आखिरी के मिनट में वो बताएंगे और समझ में आ जाएगा क्या? वो विषय ही नहीं निकला, बस आनंद महोत्सव के रूप में भगवान का नाम लेते रहे और सब लोग आनंद से रहे। इसलिए जो रूप सब देखा वहाँ, तो बड़े बड़े लोग बाद में भी हमको मिले, वो कहते ये कैसे हुआ? कैसे हुआ तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हजारों लोगों ने देखा है, उनके सामने ये सारा हुआ है, कहीं शोक का वातावरण नहीं, तब भी नहीं था, आज तक कभी ये नहीं हुआ है। तो ये जो उनका प्रारंभ में जी अनाशक्ति देखी और ये अंत में भी उनका ये जो देखा, तो हमारे जीवन में इसी की मुख्य समृद्धि है, और यही जीवन का तरीका हो सकता है, ये शिक्षा हमसे उनसे मिलती है
1: जी। जैसे कि इतनी उम्र हुई आपकी, फिर भी हमें नहीं लगता कि एक नौजवान की तरह आप सब लोग काम करते हैं। हम पिछले कई महीनों से यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, ये प्रेरणा, ये प्रेरणा स्रोत विनोबा जी आपके रहे हैं। आपको कभी ऐसा आभास नहीं हुआ कि ये, जैसे हम कहते हैं ऐसे भगवद गीता में, जैसे गीता ही तो उन्होंने ही अपनी माँ को समर्पित की, लेकिन जो है सभी जीव जो है मोह माया मद मत्सर अहंकार से परे नहीं है, तो इससे परे आप कैसे चले गए?
0: ये इससे परे हम चले गए ऐसा मानना नहीं चाहिए, ऐसा इससे परे नहीं चले गए हैं, लेकिन इससे परे अपने को जाना है, इसका दर्शन, इसका भान होता है, और वैसे जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो होता है, जब ऐसे लोगों के संगति में रहते हैं, तो जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं जिसके कारण हम मोह में फंसते हैं, उसकी कोई कीमत ही हमको मालूम नहीं होती है। जब किसी चीज़ को आपको बिल्कुल कीमत नहीं मालूम पड़े, तो उसके प्रति मोह वो होता ही नहीं है। तो लेकिन सूक्ष्म जो है, सब तरह के दोष जो है, वो अंदर से आसानी से जाते नहीं हैं, वो तो भगवत कृपा होगी तब जाएंगे। स्थूल रूप से जो है, इसकी कोई कीमत नहीं है। विनोबा जी के जीवन में कभी हमने इन सब चीज़ों की कीमत देखी ही नहीं है, और उनके आसपास आने वाले जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनको भी देखा कि जिनका सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था, आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित था, ऐसे लोगों को ही हरदम देखने को मिला। तो ये जो है सांसारिक चीज़ें हैं, इसके कोई आकर्षण का कोई कारण ही कभी देखने को ही नहीं मिला हमको, तो हमारे में वो उसका आकर्षण नहीं हुआ, इसकी बड़ी बात नहीं कि इस वातावरण में था ही नहीं वो वहाँ पर कहीं, अरे इसलिए उसका आकर्षण नहीं। और सूक्ष्म जो चीज़ें हैं, राग द्वेष आदि, ये जाना आसान नहीं है, उसके लिए तो भक्ति चाहिए उतनी, भगवत कृपा चाहिए उतनी, वो तो जब होगा तब होगा
1: जी। आज हम देखते हैं बाहरी परिसर में कि भाई भाई चारा नहीं रहा, दोस्त दोस्त के कुटकार स्थान चलते रहते हैं। आज के युवक जो है वो व्यसनाधीनता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: ऐसा है, ये सब जो दोष जो आपने गिनाए, इसकी सारी जिम्मेवारी हमारी है। युवक आए तो कहाँ से हुए हैं, हमारे सामने ही बड़े हुए, हमने उनको संस्कार दिए, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, और फिर शिकायत करते हैं। तो इसका मुख्य कारण है, हमारे जीवन में से वो चीज़ हट गई है, हमारे जीवन में सब ये चीज़ें, गलत चीज़ें आ गई है, और उसको देख देख करके वो भी रहते हैं, करते हैं। इसलिए उसकी बच्चों के लिए मुख्यतः जिम्मेवारी हमारी होती है कि वो बड़ों को देख करके उनका व्यवहार होता है। तो केवल उनको उपदेश देने से नहीं है, हमको अपने को सुधारना पड़ेगा, तब बच्चों पर असर पड़ेगा। केवल ये कि किताब का कोई लेख या ये पाठ नहीं पढ़ाना है उनको कि पढ़ो और वो सीख लेंगे। हम कहते हैं बच्चों को कि भाई सिगरेट, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, और बाप तो बीड़ी सिगरेट पीते ही है, वो कभी सीखेंगे आपके बात को मानेंगे क्या? कभी नहीं मानेंगे। एक बात ये हुई, दूसरी बात जो है, हमारी शिक्षा की जो पद्धति है ये कोई पद्धति नहीं है, इसमें शिक्षा में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नौकर तैयार करने की शिक्षा पद्धति है, इसलिए इसमें जो है कोई प्राण ही नहीं है। फिर भी आज के विद्यार्थी उस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छे हैं हिंदुस्तान में। अगर ये जितनी रद्दी शिक्षा होते हुए भी इतने अच्छी तरह से विद्यार्थी और जवान लोग व्यवहार करते हैं तो ये तो बड़ी विशेष बात है, ये हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। लेकिन नहीं तो इतनी ऐसी रद्दी शिक्षा में मुझे नहीं लगता कि ऐसी हम लेते तो हमारा क्या हल हो जाता। दूसरा, इसके साथ साथ शिक्षा के साथ हमारा आजकल एक भयानक एक यहाँ शुरू हुआ है, अंग्रेज़ी भाषा तो हम भी सीखते थे लेकिन आजकल जिस तरह से अंग्रेज़ी मीडियम चालू हो गया है इसके कारण भारतीय संस्कार, भारतीय जो नैतिक और आध्यात्मिक जीवन है उसके संस्कार बच्चों को मिलते ही नहीं है। और जितना बड़ा होता जाता है, अंग्रेज़ी भाषा से नुकसान नहीं है, अंग्रेज़ी भाषा तो हमने कहा ना हम भी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, रोज़ होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी मीडियम के कारण ये बच्चे न अपनी भाषा जानते हैं न अंग्रेज़ी जानते हैं, अधिकतर लोगों की दुर्दशा हो जाती है। इसलिए ये बहुत बड़ा एक कारण है जो भारत का जो वातावरण बिगड़ रहा है, या सहिष्णुता की बात करते हैं, ये जो पॉलिटिकल असहिष्णुता कहती है उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो उन्हीं लोगों के चित्त में असहिष्णुता है जो शिकायत करते हैं, लेकिन ये जो वातावरण बिगड़ रहा है इसका एक बहुत बड़ा कारण है अंग्रेज़ी मीडियम की शिक्षा, अंग्रेज़ी भाषा की नहीं। तो वो आपकी भाषा उत्तम आए सब की है, उसके बाद अंग्रेज़ी भी पढ़िए तो ये अच्छा रहेगा, और उसके बाद अंग्रेज़ी अच्छी पढ़ी जाएगी, आज के जैसे नहीं होगी। तो इसके कारण आज बच्चे हमारी जो प्राचीन परंपरा है उससे बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। इसके बहुत अनुभव आए हैं, हम लोगों ने बात की है, कई लोगों ने अपने पालक है उन्होंने बच्चों को अपनी मराठी या हिंदी भाषा में पढ़ाई की उन्होंने, तो उन बच्चों को देखते हैं तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा तेजस्वी और अच्छे निकलते हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी आपत्ति के जैसे ही आज भारत में आई हुई है, और ये सब चीज़ें दूर नहीं होगी, शिक्षा, शिक्षा की पद्धति और ये शिक्षा का मीडियम जो है ये नहीं होगा, तो आज जो बच्चे हैं अभी हालत जो है वो मैं काफ़ी अच्छे हैं ऐसा ही समझता हूँ।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस श्रृंखला में आप जुड़े, इसलिए एमगिरी की ओर से मैं धन्यभागी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।